0: Mitchy Roshi.
1: Only on Radio Mitchy New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: अगर हम ग्रीस में होते तो आज के दिन यानी कि ट्यूसडे को शादी करना अनलकी माना जाता है, लेकिन क्योंकि हम इंडिया में हैं, ट्यूसडे को कोई भी काम शुरू करना काफ़ी लकी माना जाता है. सो इफ़ यू आर इन लव विद समबडी एंड यू आर टोटली क्रशिंग ओवर देम, शायद आज एक अच्छा दिन होता फॉर यू टू टेल दैट पर्सन, और ये दिन अभी ख़त्म नहीं हुआ है, टू टेल दैट पर्सन दैट यू रियली एक्चुअली लव देम. क्योंकि व्हाट्स दैट सेइंग कि शुभ काम में देरी कैसी और समथिंग लाइक दैट. तो अगर आपको ऐसा शुभ काम करना है, व्हाई नॉट डू इट ऑन Radio. अपना नंबर भेजो, अपने क्रश का नंबर भेजो और मैं आपके दोनों के बीच का कनेक्शन करा दूंगी, क्योंकि मेरा नाम है मिर्ची रोशी और काम है आपसे प्यार करना. वेलकम टू ब्रांड न्यू एडिशन ऑफ मिर्ची इंस्टा प्यार. देयर इज अ लॉट ऑफ लव, लक एंड अ लॉट ऑफ गुडनेस पैक्ड इन टुडेस शो. सो माय सजेशन टू यू इज स्टिक अराउंड, सेंड मी योर नंबर एंड व्हाइल यू डू दैट, कहीं मत जाना जाना क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.
3: हेलो,
4: मिल गया मैडम. आप मयूर विहार में हमारा रक्षा पे बैठ के मयूर विहार फेज वन से फेज टू गई थी, याद आया है आपको?
3: नहीं, नंबर कहाँ से मिल गया?
4: वही आपको बता रहे हैं. आप जब उतर के गई हैं ना अपने घर, और घर के जो आपके पड़ोसी हैं, हम उनसे नंबर आपका लिए हैं, मोबाइल नंबर जो आप बोले हैं दाएं को मुड़ने के लिए, जब दाएं मुड़े हैं ना हम. मैडम आपका रास्ते में फोन भी आया था, जब आपका फोनवा बजा है तो आपकी आवाज सुने हैं हम, बहुत अच्छा लगा है आवाज सुन के. आप जब रिक्शा पे बैठी है ना, मैं हम कसम खा रहे हैं, हम जब से आप बैठे हो उस सीट को हम छूने भी नहीं दिए, हम धोलाए भी नहीं है.
3: क्या तुझे पागल लगा?
4: नहीं, वो मैडम हम आपसे एक बात कहना चाह रहे थे.
3: क्या कहना है?
4: मैडम आई लव यू. हम आपको देख के इतना मेरी बात है. चारू चारू फोन मत रखना, चारू फोन मत रखना, चारू फोन मत रखना, चारू चारू चलो. हेलो हेलो हेलो हेलो, चारू मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. मुझे किसी ने तुम्हारा नंबर दिया था, उसने मुझे बताया कि तुमने रिक्शा पे ट्रैवल किया था, रिक्शा पे बैठ के गई थी, मैंने तो मजाक किया, तुम्हारा मुर्गा बना दिया. आई लव यू बट मैं सभी से मोहब्बत करता हूँ यार, आई लव यू. मैं रिक्शा नहीं चलाता चारू, प्लीज बुरा मत मान यार थोड़ा सा. नहीं रिक्शा मैं चलाने को तैयार हूँ यार तुम्हारी वजह से, लेकिन तुम प्लीज जरा थोड़ा सा गुस्सा कम कर दो, मेरे साथ प्यार से हंस के बोल दो.
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: Mitchy Roshi.
1: Only on Radio Mitchy New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: आपने अपने बॉयफ्रेंड को केक बना के दिया, उसमें आपने चीज केक के लेयर में कुत्ते के बिस्किट डाले, वो शर्म नहीं आती? बॉयफ्रेंड को पता चल गया ना, इतना रोने वाला और आपको इतना रुलाने वाला ना ब्रो।
3: The secret box.
2: और ये ब्रो ब्रो क्या करते रहते हो यार आपको? आई एम नॉट योर ब्रो, आई एम योर सिस। व्हाई डोंट यू हिट योर सिस अप, नॉट हिट योर सिस, ठीक है? हिट योर सिस अप ऑन इंस्टा या एफबी। मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मेरे साथ लाइन पर एक मिस्ट्री कॉलर है जिन्होंने अपनी स्टोरी मुझे लिख के भेजी, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं ना हंसूं। तो मिस्ट्री कॉलर,
4: हेलो,
2: कैसन बा?
4: अभी तो नहीं ठीक बा।
2: अभी नहीं ठीक बा, हम ठीक कर देंगे बा। नोटिफिकेशन बा,
4: बिल्कुल, बहुत बहुत जरूरत है।
2: क्या हो गया यार, क्या हो गया
4: यार, क्या ही बताऊं, बड़ी दुख दर्द वाली कहानी है। देवदास बन चुका हूं मैं।
2: देवदास बन गए हो आप? इतना दुख दर्द आ गया आपके जीवन में, क्या हो गया ऐसा?
4: मैं क्या बताऊं, मैं अभी थोड़े दिन पहले अपनी पहली डेट पे गया था, तो मैंने सोचा कि, और पहली डेट पे मतलब लोग जाते हैं घूमने के लिए, कहीं लंच के लिए जाते हैं, डिनर के लिए जाते हैं, और मैं गया था स्टैंड अप कॉमेडी देखने,
2: व्हिच इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग।
4: नहीं, ये बहुत बड़ी गलती थी जो बाद में मेरे को पता लगी।
2: क्यों?
4: वहां पे हुआ क्या कि स्टैंड अप कॉमेडी जब चल रही होती है तो बार बार स्टैंड अप कॉमेडियन इंटरेक्ट करने की कोशिश करता है लोगों से,
2: राइट?
4: तो उसने क्या किया, वो मेरी जो मेरे साथ आई थी उसके साथ बार बार बात करने की कोशिश कर रहा था, बार बार बात करे जा रहा था, और मैं अंदर से चले सर बस कर मेरे भाई, बस कर यार, कितनी बार करेगा बातें, पर वो अपना चालू रखा था। तो उसने एकदम से पूछ लिया कि आप सिंगल हैं, किसी के साथ आए हो? तो उसने बोल दिया नहीं, उसने बोला कि मैं किसी के साथ आई हूँ। तो फिर पूछा कि भाई ये आपके साथ कौन है फिर? तो उसने बोल दिया कि ये तो मेरा दोस्त है। अब फिर से मुझे लगा कि यार कितनी बार फ्रेंड जोन होऊंगा मैं।
2: वो दोस्त कह रही थी यार, फर्स्ट डेट में तो दोस्त ही कहते हैं, फर्स्ट डेट में कौन कह देता है कि बॉयफ्रेंड है
4: यार। थोड़ी सी तो एक्सपेक्टेशन होती है लड़के, हाँ, यार लड़कों, हाँ, थोड़ी बहुत एक्सपेक्टेशन होती है। तो फिर उसके बाद क्या हुआ,
2: हाँ,
4: कि वहां तक तो ठीक था, मैंने कहा चलो ठीक है, अभी इतना बोल रहे हैं, इसके बाद तो बस कर ही देगा अभी स्टैंड अप कॉमेडियन। तो जब हम जा रहे थे तो उसने क्या किया, उसने मेरी बंदी से पूछ लिया, मतलब मेरी बंदी को क्या ही बोलूंगा मैं, उसने दोस्त ही बोल दिया। तो उसने उससे पूछ लिया कि मेरे साथ डेट पे चलोगी? और मैं तो था हैरान, और मेरे को लगा कि मना ही कर देगी, और उस लड़की ने हाँ कर दिया और वो दोनों चले गए, और मैं सिर्फ देखता रह गया। मैंने कहा यार और कितनी बार,
2: तेरे साथ ही अच्छा नहीं हुआ यार, मुझे बहुत खराब लग रहा
4: है, बिल्कुल मतलब, बहुत नाइंसाफी है।
2: रुक जा, मैं देखो रोशिफाई कर देती हूँ, टेल मी इफ यू फील बेटर।
0: रोशिफाइड,
2: कैसा लग रहा है आपको?
4: बहुत अच्छा लग रहा है, बिल्कुल मैं ऐसे लग रहा है कि बिल्कुल रिलैक्स हो गया हूं, सारी टेंशन निकल चुकी है।
2: इतना ड्रामेटिक है ना तू, बट ऑनेस्टली लाइक जस्ट बिकॉज यू हैड सच अ टेरिबल डेट, व्हाई डोंट यू अराउंड क्रिसमस आस्क मी आउट टू गो आउट ऑन अ डेट विद यू, एंड इफ आई एम स्टिल सिंगल एंड आई डोंट हैव अ डेट आई विल बी हैप्पी टू कम विद यू।
4: प्लीज रोशी, प्लीज।
2: ओके, कूल, हंस रहा है। इट वॉज वेरी नाइस टॉकिंग टू यू मिस्ट्री कॉलर, और अगर आपकी भी जिंदगी में ऐसे ही में मिस्ट्री कॉलर की तरह ये भसड़ हो रही है आपके साथ, माई गॉड यार अच्छा नहीं लग रहा मुझे सुन के, वाई डोंट यू हिट मी अप इंस्टा पर या FB पर, आई बी हैप्पी टू टॉक टू यू। मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE, सो हिट मी अप, डू व्हाटएवर यू हैव टू डू, लेकिन कहीं मत जाना क्योंकि वापस तो यही है आना। सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट।

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: अरे भाई क्यों मार रहे हो इसे?
1: अबे भाई मैंने इससे पूछा क्रिकेट का गोल्ड कौन है,
0: इसे ये नहीं पता।
1: कौन है बता?
0: कोहली।
1: अरे तू भी हंस। इधर हमारी विमेन्स क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को हरा के एशियन गेम्स में गोल्ड जीता है और तुम दोनों को गोल्ड नहीं पता। तुम दोनों गग गोल्ड हो।
2: वो क्या होता है?
1: गैर गुजरे ऑफ ऑल टाइम
2: इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम। कंग्रेचुलेशंस।
3: इट्स हॉट।

मैं बैकग्राउंड में बोलती क्या आ रहा हूँ, मैं तुम्हारा पर्सनल रेडियो नहीं हूँ. मैं एक बहुत ही शॉर्ट वाइल के लिए एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में थी, बिकॉज गॉड इज माई विटनेस आई कुडंट मेक इट वर्क. लेकिन क्या होता था, बिकॉज हम दोनों, यू नो, वी रियली वॉन्टेड टू स्टे इन टच विद ईच अदर. वो जब भी शॉपिंग जाता था वो मुझे फ़ोन करता था, और ऑब्वियस क्योंकि वो शॉपिंग कर रहा है और यू नो ही इज़ बाइंग ग्रोसरीज, ही इज़ बाइंग जो भी चीज़ ख़राब हो जाती थी, मतलब बेसिकली संडे ग्रोसरी शॉपिंग, वो मुझे फ़ोन करता था, हम बात कर रहे होते थे, और वो साइमल्टेनियसली शॉपकीपर से भी बात कर रहा होता था. पहले दो तीन दिन तो मुझे लगा काफ़ी क्यूट है, लेकिन उसके बाद जब ये हर संडे होने लगा, आप एक भाई तुम्हें को क्यों फ़ोन करता है, अगर तेरे को एक घंटा शॉपिंग के लिए चाहिए तो मेरे को आराम से फ़ोन कर, पाँच मिनट के लिए फ़ोन कर, बंदों के साथ बाहर क्लबिंग जा रहा है उसके पाँच मिनट पहले फ़ोन कर दे, बट ये शॉपिंग के बीच में ना जस्ट टू मेक दिस LDR वर्क, प्लीज़ मेरे को फ़ोन मत किया कर, दैट जस्ट मेक्स एवरीथिंग गो बैड. तुझे लग रहा है कि हम कनेक्ट कर रहे हैं, बॉन्ड कर रहे हैं वाइल योर शॉपिंग, मुझे पता है कि तूने कितने किलो अरहर की दाल खरीदी, बट रियली आई एम नॉट इंटरेस्टेड, आई जस्ट वॉन्ट टू स्पेंड टाइम विद यू आराम से, शांति से. तो अगर आप भी एक LDR में हो और आप अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड को फ़ोन करके साथ में कुछ और भी कर रहे हो, आपका बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड स्टूपिड नहीं है, दे प्रॉब्ली गोना एंड अ फीलिंग लाइक यू आर डूइंग दिस जस्ट बिकॉज यू हैव टू डू इट. आप फिगर आउट करो कि क्या एल्गोरिथम है टू मेकिंग एन LDR वर्क, एंड इफ यू हैव फिगर इट आउट देन आई वांट टू नो द स्टोरी फ्रॉम यू मॉर्निंग ग्लोरी. एंड डू दैट यू कैन हिट मी अप इंस्टा पर या FB पर, मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम के स्पेलिंग है ROCHIE, सो गो अहेड एंड डू व्हाटएवर यू हैव टू डू, लेकिन कहीं मत जाना जाना क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: Mitchy Roshi.
1: Only on Radio Mitchy New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: एक नई स्टडी के हिसाब से जो लोग दोपहर को नैप लेते हैं दे एक्चुअली माइट एंड अप हैविंग बिगर ब्रेन्स. नाउ यू मस्ट बी वंडरिंग कि बिगर ब्रेन से आप क्या करोगे. दैट्स नॉट व्हाट यू आर इंटरेस्टेड इन. इफ यू आर अ नॉटी पर्सन लाइक दैट व्हाई डोंट यू हिट मी अप विद योर नॉटी लव स्टोरी. उसके बारे में बात करते हैं. मेरा नाम है मिर्ची रोशी. नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. लेकिन फॉर द मोमेंट मेरे साथ लाइन पर बहुत ही हॉट साउंडिंग मयंक है. हाय मयंक.
3: हाय रोशी.
2: How are you?
3: I'm very well. How are you?
2: ये इतना hot sound करने की क्या ज़रूरत है? मतलब मैं ही तो हूँ and you are making me want to sound hotter like.
3: Really? Hi, मैं तो इसलिए sound कर रहा हूँ because I found somebody really hot for myself.
2: Congratulations.
3: Yeah.
2: तो आपने मुझसे congratulations लेने के लिए तो phone नहीं किया. That much I'm sure of.
3: Yes. So what happened was recently I found somebody on a dating app and trust me, the girl is really gorgeous. Not worth letting her go away, kind. So I have a small confusion. Okay, so I'm not really sure if I should be kissing her on the first date or should I play it a little slow and take it easy.
2: Yeah, honestly, it's a good question because koi rule nahi hota hai when it comes to the first date. Okay, aap usse ek dating app pe mile ho, you've never met before this, aur aapke koi dost nahi hai in common. Agar aap usse kisi club mein mile hote ya kisi dost ki house party pe mile hote, aap ek dusre ko pehle se face to face personally jante hote.
3: Right.
2: Then maybe kissing on the first date was probably not a bad idea. But क्योंकि आप दोनों पहली बार मिल रहे हो, the chances are that थोड़े से awkward होगे दोनों. आप शायद नहीं, but I'm sure वो थोड़ी सी awkward हो. And अगर आपने उसे किस करने की कोशिश की and she's not ready for it, then हो सकता है कि किस की जगह आपको थप्पड़ पड़ जाए, right?
3: Right. The fear was actually bad, ना कि पता चला चाटे आ गए वहाँ से.
2: But you know the thing is that पहले तो judge the vibe. I always judge the vibe of a person. बहुत time पहले की बात है ये. I don't even know why I'm telling you, but I met this guy. मेरी first date थी in a bookstore, okay? और लाइक पांच छह जने हैं उस बुक स्टोर में बिकॉज आजकल किताब ही कौन पढ़ता है. एंड दिस गाय एंड आई किस्ड इन द फर्स्ट हाफ एन आवर ऑफ आवर डेट इन अ बुक स्टोर.
3: नॉट बैड. शुड आई आस्क हर आउट फॉर अ बुक स्टोर?
2: यू नो एक्चुअली यू कुड, क्योंकि बुक स्टोर में लोग कम होते हैं एंड बुक स्टोर इतना कोजी और इंटीमेट सेटिंग होता है दैट हो सकता है लाइक हाउ आई गॉट माई फर्स्ट किस इन अ बुक स्टोर विद दैट गाय. हो सकता है आपकी फर्स्ट किस भी बुक स्टोर में हो जाए.
3: You never know.
2: I mean, you really don't. And agar wo vibe nahi hai and you're interested in her and you want to take it to the second date, then honestly the thing to do is that try holding her hand. Try putting aapka haath across her shoulder. Pyar dikhane ke bahut sare tareeke hote hain. You don't necessarily have to use your lips to show your love.
3: Right.
2: You know what I mean?
3: I think I should just judge the vibe.
2: Correct.
3: If it makes sense.
2: Correct.
3: Then we go ahead.
2: I have something to tell you. मैंने किताब खरीदी थी एयरपोर्ट पे और उस किताब के हिसाब से ह्यूमन साइकोलॉजी ऐसी है कि अगर आपके सामने वाला इंसान एक गर्म ड्रिंक पी रहा है तो उसका मूड ज्यादा सेंसुअल हो जाता है.
3: Okay. So I think it should be coffee rather than beer this time.
2: I agree. But all the best for your date. I hope you have a great
3: Thank
2: time.
3: Thank you so much.
2: And मुझे बताना मत भूलना how it went. और अगर आपके साथ भी ऐसी ही confusion है, first date है, दिल धक धक धक कर रहा है, just hit me up on Insta या FB.

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: अरे भाई क्यों मार रहे हो इसे?
1: अबे भाई मैंने इससे पूछा क्रिकेट का गोल्ड कौन है,
0: इसे ये नहीं पता।
1: कौन है पता?
0: कोहली।
1: अरे तू भी आस। इधर हमारी विमेंस क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को हरा के एशियन गेम्स में गोल्ड जीता है और तुम दोनों को गोल्ड नहीं पता। तुम दोनों गग गोल्ड हो।
2: वो क्या होता है?
1: गैर गुजरे ऑफ ऑल टाइम
2: इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम। कंग्रेचुलेशंस।
3: इट्स हॉट।

0: Mirchi Roshi.
1: Only on Radio Mirchi New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: If you're a guy, I'm going to tell you एक ऐसा secret जो आज तक I betcha कि किसी लड़की ने आपको नहीं बताया होगा, but it is true. So, मैं और मेरी neighbor एक conversation कर रहे थे and we both realized कि we are attracted to men जो अक्सर jeans नहीं पहनते हैं. उसके बदले when they wear linen pants या khakis, we find that very attractive. पहले मुझे लगता था that I'm the only person who thinks like that, that men are very attractive when they're wearing, you know, slightly semi-formal कपड़े. They just look really hot in that. But जब मेरी neighbor और मैं ये conversation कर रहे थे, फिर office में मैं और मेरी गर्लफ्रेंड्स ही कॉन्वर्सेशन कर रहे थे, वी ऑल रियलाइज कि जीन्स वीन्स तो ठीक है, वी डेफो फाइंड मैन हॉट जब उन्होंने व्हाइट टी शर्ट और ब्लू जीन्स पहनी होती है, बट भाई लाइक खाकी एंड लाइक यू नो लिनन की एक शर्ट, ओ उफ यम्मा. अगर आप इम्प्रेस करना चाहते हो अपनी डेट को, देन रियली ट्राई दिस एंड नॉट ओनली विल यू लुक डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द क्राउड जो बाकी के लोग जीन्स और टी शर्ट में घूम रहे हैं, बट ऑल्सो ये सेमी कैश एंड सेमी फॉर्मल मीट्स ईच अदर वाली जो लुक है ना, इट इज ड्रॉप दैट हॉट. इसे ट्राई करके देखो. आई एम प्रॉमिसिंग यू, यू विल ओनली कम बैक विद 100% सक्सेस. और एक बार ऐसा हो जाए, मुझे शुगर फ्री चॉकलेट्स चाहिए, आपका थैंक यू और बहुत सारा प्यार चाहिए, उसे भेजने के लिए आप मुझे ढूंढ सकते हो इंस्टा पर या FB पर. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. सो गो अहेड, चेंज योर वार्डरोब एंड कहीं मत जाना जाना, क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, इट्स हॉट।
1: अज बोतला खुल

हीलिंग होटल, आर यू किडिंग मी? एक ऐसा होटल जहां पर आप जाते हो अपने टूटे हुए दिल को जोड़ने। आई वॉज सो शॉक्ड जब मैंने पहली बार इस होटल के बारे में पढ़ा। तो ग्रीस में ये हीलिंग होटल खुला है जहां पर दुनिया जहान से जिस भी इंसान का दिल टूटा है वो इस होटल में जाते हैं, जहां पर सोल फूड होता है, कंफर्ट फूड होता है, ताकि आपके टूटे हुए दिल को थोड़ा सा सहारा मिले। वहां पर पेडिक्योरिस्ट होते हैं, रिफ्लेक्सोलॉजिस्ट होते हैं, मसाजेस होती हैं। यू कैन स्टे देयर फॉर एज लॉन्ग एज यू वॉन्ट, ऑब्वियसली एट अ वेरी प्रीमियम प्राइस, जब तक कि आपका टूटा हुआ दिल ठीक नहीं हो जाता। और आई कैन टेल यू द ट्रूथ, मैंने इस होटल की फोटोज देखी हैं, ये इतना हॉट एंड स्पाइसी होटल है कि मेरा दिल नहीं भी टूटा है, टच वुड, मेरा फिर भी यहाँ जाने का मन कर रहा है। अब सोचो अगर इंडिया में ऐसे एक हीलिंग होटल खुलना होता, एंड इंडिया इज सच अ डाइवर्स एंड रिच कंट्री लाइक दैट कल्चरली, आपको क्या लगता है कहाँ खुलता है ये हीलिंग होटल? टू टेल मी योर आंसर, और क्या आपको एक हीलिंग होटल की जरूरत है? क्योंकि उसके लिए मैं हूं ना आपके साथ, आपकी ब्रोशी, नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE। सो हिट मी अप एंड टेल मी वेयर इन इंडिया वुड दिस हीलिंग होटल बी, एंड व्हाइल यू आर एट

0: Mitchy Roshi.
1: Only on Radio Mitchy New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: आपने अपने बॉयफ्रेंड को केक बना के दिया, उसमें आपने चीज केक के लेयर में कुत्ते के बिस्किट डाले, वो शर्म नहीं आती? बॉयफ्रेंड को पता चल गया ना, इतना रोने वाला और आपको इतना रुलाने वाला ना ब्रो।
3: The secret box.
2: और ये ब्रो ब्रो क्या करते रहते हो यार आपको? आई एम नॉट योर ब्रो, आई एम योर सिस। व्हाई डोंट यू हिट योर सिस अप, नॉट हिट योर सिस, ठीक है? हिट योर सिस अप ऑन इंस्टा या FB। मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मेरे साथ लाइन पर एक मिस्ट्री कॉलर है जिन्होंने अपनी स्टोरी मुझे लिख के भेजी, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं ना हंसूं। तो मिस्ट्री कॉलर,
4: हेलो,
2: कैसन बा?
4: अभी तो नहीं ठीक बा।
2: अभी नहीं ठीक बा, हम ठीक कर देंगे बा। नोटिफिकेशन बा,
4: बिल्कुल, बहुत बहुत जरूरत है।
2: क्या हो गया यार, क्या हो गया
4: यार, क्या ही बताऊं, बड़ी दुख दर्द वाली कहानी। देवदास बन चुका हूं मैं।
2: देवदास बन गए हो आप? इतना दुख दर्द आ गया आपके जीवन में, क्या हो गया ऐसा?
4: मैं क्या बताऊं, मैं अभी थोड़े दिन पहले अपनी पहली डेट पे गया था,
2: तो
4: मैंने सोचा कि, और पहली डेट पे मतलब लोग जाते हैं घूमने के लिए, कहीं लंच के लिए जाते हैं, डिनर के लिए जाते हैं, और मैं गया था स्टैंड अप कॉमेडी देखने,
2: व्हिच इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग।
4: नहीं, ये बहुत बड़ी गलती थी जो बाद में मेरे को पता लगी।
2: क्यों?
4: वहां पे हुआ गया कि स्टैंड अप कॉमेडी जब चल रही होती है तो बार बार स्टैंड अप कॉमेडियन इंटरेक्ट करने की कोशिश करता है लोगों से,
2: राइट?
4: तो उसने क्या किया, वो मेरी जो मेरे साथ आई थी,

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: क्या वो मोहब्बत जिसका हिसाब लग जाए, बोले वो तो लगे के रब्बा बच जाए, लड़ मरेंगे लोग आग लग जाए, चेहरे से तेरे जो नकाब हट जाए।
1: हो सब

परास की किताब पढ़ती है, वो तितलियां साथ रखती है। मेरी दुनिया अपार लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।

0: अरे भाई क्यों मार रहे हो इसे?
1: अबे भाई मैंने इससे पूछा क्रिकेट का गोल्ड कौन है,
0: इसे ये नहीं पता।
1: कौन है बता?
0: कोहली।
1: अरे तू भी आस। इधर हमारी विमेंस क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को हरा के एशियन गेम्स में गोल्ड जीता है और तुम दोनों को गोल्ड नहीं पता। तुम दोनों गग गोल्ड हो।
2: वो क्या होता है?
1: गैर गुजरे ऑफ ऑल टाइम
2: इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम। कंग्रेचुलेशंस।

मेरे भाई को ना एक लड़की बहुत पसंद है. ओके, एंड देन वो उसे घर लाया हम सबको मिलाने के लिए. एंड शी वेरी स्मार्टली अवर्टेड एनी कॉन्वर्सेशन अराउंड पॉलिटिक्स, अराउंड रिलीजन. और मेरे भाई से तो उसने इतने प्यार से बात की कि जब हम उसे गुड बाय बोलकर सब वापस अंदर आए, ही वॉज लाइक, रोशी इतने प्यार से तो वो मुझसे बात नहीं करती है. आई वॉज लाइक, बहुत स्मार्ट लड़की है करण. क्योंकि अगर आप अपने गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के पेरेंट्स को और सिबलिंग्स को पहली बार मिल रहे हो ना, देर आर अ कपल ऑफ थिंग्स यू शुड ऑलवेज कीप इन माइंड. सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप डेफिनेटली कोई भी रिलीजियस या पॉलिटिकल बात मत करना, क्योंकि हमारे कंट्री में इतना सेंसिटिव इशू है ना ये दोनों, कि अगर आपके पॉइंट ऑफ व्यूज़ नहीं मिलते हैं, इट कुड लीड टू अ वेरी डिफिकल्ट कॉन्फ्लिक्टेड सिचुएशन. दूसरा, अगर आपने अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के पेरेंट्स के सामने अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड से प्यार से बात की, द पेरेंट्स विल नो कि यार बहुत ही सही इंसान के साथ है मेरा बेटा या बेटी, बिकॉज यू नो ही और शी इज़ बीइंग ट्रीटेड विद सो मच रिस्पेक्ट. और तीसरी चीज़, जब आप अपने पोटेंशियल हस्बैंड या वाइफ के पेरेंट्स को मिलने जा रहे हो, ट्राई एंड शो रिस्पेक्ट बाय ड्रेसिंग अप्रोप्रिएटली. मतलब माना

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: इधर।
1: अरे भाई क्यों मार रहे हो इसे?
0: अबे भाई मैंने इससे पूछा क्रिकेट का गोल्ड कौन है,
1: इसे ये नहीं पता।
0: कौन है बता?
1: कोहली।
0: अरे तू भी
2: यस। इधर
0: हमारी विमेंस क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को हरा के एशियन गेम्स में गोल्ड जीता है और तुम दोनों को गोल्ड नहीं पता। तुम दोनों गग गोल्ड हो।
3: वो क्या होता है?
0: गैर गुजरे ऑफ ऑल टाइम
2: इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम। कंग्रेचुलेशंस।
4: इट्स हॉट।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट।
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

इस एक फिल्म के पीछे ये फ्रेंड्स के बीच में लड़ाई हो गई थी। पुरानी जींस पे आप श्रेया के साथ, हेलो हेलो, वेलकम वहीदा रहमान, शर्मिला टैगोर, जीना तमान एंड आशा पारेख, सब ना बहुत ही क्लोज फ्रेंड्स थे। लेकिन फिर एक फिल्म ऐसी आई जिसकी वजह से शर्मिला टैगोर और आशा पारेख के बीच में ना जय हो गई, वो भी पब्लिकली बोले तो, मतलब सबके सामने नहीं, लेकिन हाँ फिल्म मैगजीन्स ने इनके बारे में जम करके लिखा। कभी कोई फिल्म मैगजीन आशा पारेख का व्यू लिख रही थी और कभी कोई फिल्म मैगजीन एक्चुअली में शर्मिला टैगोर का पीओवी लिख रही थी। वेल, कौन सी थी ये फिल्म अभी आपको बताऊंगी, वापिस श्रेया के साथ ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

शर्मिला टैगोर का कहना था कि वो फर्स्ट चॉइस थी फॉर दिस फिल्म, और उसके बाद जब उन्होंने एक फिल्म मैगजीन को इंटरव्यू दिया और यही बात कोट कर दी तो भाई घमासान मच गया दो दोस्तों के बीच में, क्योंकि आशा पारेख का कहना था कि वो कभी भी सेकंड चॉइस नहीं थी। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ एंड टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट द फिल्म कटी पतंग, जिसमें थे राजेश खन्ना जी, शक्ति सामंत ने ये फिल्म बनाई थी। एंड कहते हैं कि भाई शर्मिला टैगोर ने कहा कि ये फिल्म सबसे पहले उनके पास गई थी, शी डिनाइड डूइंग द फिल्म क्योंकि शी वाज प्रेग्नेंट एट दैट टाइम, तो फिर वो ये फिल्म कर नहीं पाई एंड इसीलिए फिर इसका रोल गया आशा पारेख को। आशा पारेख ने जब ये आर्टिकल पढ़ा एक फिल्म मैगजीन में, उन्होंने उसी मैगजीन को जाकर के फिर से इंटरव्यू दिया और कहा कि ऐसा कभी भी नहीं था, वो पहली चॉइस थी, शक्ति सामंत उनके पास आए थे ये रोल लेकर के। वेल लेटर ऑन शक्ति सामंत ने ये बात एक्सेप्ट भी की कि उन्होंने सबसे पहले इस रोल के लिए अप्रोच किया था शर्मिला टैगोर को। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ कटी पतंग की बातें चलेंगे आज, और इस फिल्म के गाने भी होंगे, सो डोंट यू गो एनीवेयर।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर,
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में। अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट,
1: ओनली ऑन रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

पता है मुझे उस जमाने के गानों की एक बात इतनी खास लगती थी कि गानों में ना सेट्स या फिर विजुअल्स हीरो नहीं होते थे, बल्कि हीरो होते थे लिरिक्स ऑफ द सॉन्ग, द कॉम्पोजिशन ऑफ द सॉन्ग, द हीरो एंड द हीरोइन. अदरवाइज विजुअल्स वर सो सिंपल एंड सो सूदिंग टू आइज. तो अगला जो गाना मैं कटी पतंग का आपको सुनाने वाली हूँ ना, उसमें राजेश खन्ना एकदम नॉर्मल सा कोट पहने हुए हैं, व्हाइट साड़ी में क्लैड हैं आशा पारेख. और आजकल जो विंग लाइनर हम लगाते हैं ना, ये आशा पारेख से ही शुरू हुआ था. मेकअप के नाम पे उन्होंने सिर्फ विंग लाइनर लगाया हुआ है. और उस टाइम पे 90s में चला करती थी ना, पिकनिक मनाते थे हम जाकर के किसी भी ग्राउंड में बैठ जाते थे. सो आशा पारेख एक ग्राउंड में है अपनी सहेलियों के साथ, पिकनिक मन रही है और राजेश खन्ना आने काका उनके इर्द गिर्द घूम करके बस कह रहे हैं ये शाम मस्तानी. ये गाना कमिंग योर वे किशोरदा की आवाज, ओनली ऑन पुरानी जीन्स. मैं हूँ श्रेया. फेसबुक और इंस्टा पे यू कैन रीच आउट टू मी, आरजे श्रेया विद लव. दैट्स आरजे SHREYA श्रेया विद लव इज माई हैंडल.

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: अरे भाई क्यों मार रहे हो इसे?
2: अबे भाई मैंने इससे पूछा क्रिकेट का गोल्ड कौन है,
1: इसे ये नहीं पता।
2: कौन है पता?
1: कोहली।
2: तू भी यार। इधर हमारी विमेंस क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को हरा के एशियन गेम्स में गोल्ड जीता है और तुम दोनों को गोल्ड नहीं पता। तुम दोनों गग गोल्ड हो।
3: वो क्या होता है?
2: गैर गुजरे ऑफ ऑल टाइम
3: इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम। कंग्रेचुलेशन।
4: इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

इस टाइम पे ना विलेंस का भी मेजर रोल होता था हिंदी इंडस्ट्री। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ एंड प्रेम चोपड़ा काफी टाइम से कोशिश कर रहे थे कि वो एज अ फेमस विलेन एस्टेब्लिश हो जाए, जिससे कि उनके पास फिल्मों के रोल आए, लेकिन ऐसा हो ही नहीं पा रहा था। बट आफ्टर दिस फिल्म प्रेम चोपड़ा और बिंदु जी के पास ढेर सारे रोल्स आते थे। वेल, मैं बात कर रही हूँ फिल्म कटी पतंग की, राजेश खन्ना एंड आशा पारेख की फिल्म जो की शक्ति सामंत ने बनाई थी। Well, उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि इस फिल्म में रोल करने के बाद फाइनली उनका ड्रीम फुलफिल होगा। भाई शोले के बाद तो हर कोई गब्बर बनना चाहता था, तो बस प्रेम चोपड़ा इसी लगन में लगे रहते थे कि एक बार वो किसी तरह विलेन का रोल ऐसे क्रैक करें कि हर कोई उनको विलेन के रोल में एक्सेप्ट कर ले। एंड दैट एक्चुअली हैपेंड फ्रॉम द फिल्म कटी पतंग। इसके बाद बिंदु और प्रेम चोपड़ा के पास इतने सारे रोल्स आते थे कि फिल्में साइन करते करते दोनों थक जाते थे। पुरानी जीन्स पे इसी फिल्म की बातें बैक टू बैक विद मी श्रेया, तो बस कहीं भी मत जाना।

आशा पारेक फिल्में तो बहुत सारी कर रही थी, लेकिन कोई भी फिल्म उनका ड्रीम, उनका सपना नहीं पूरा कर पा रही थी। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ और आशा पारेक की बात कर रही हूँ, यानी कटी पतंग की बात कर रही हूँ। वेल, आशा पारेक बैग्ड फिल्म फेयर अवार्ड इन द कैटेगरी ऑफ बेस्ट एक्ट्रेस फॉर द फिल्म कटी पतंग। आज इसी फिल्म की बातें, इसी फिल्म के गाने ढेर सारे विद मी श्रेया। और सुनो, अगर आपको मुझसे कुछ कहना है

आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द सुपरहिट फिल्म कटी पतंग टुडे। वेल, शक्ति सामंत ने डायरेक्ट की थी, काका यानी राजेश खन्ना थे एंड इसमें थी आशा पारेख। अच्छा, आराधना इससे पहले रिलीज हो चुकी थी शक्ति सर की, सो ही डिसाइडेड कि क्योंकि आराधना के गाने इतने सुपर डुपर हिट हुए थे, ही डिसाइडेड कि वो अपनी म्यूजिक टीम सेम रखेंगे, यानी आरटी बर्मन साहब का म्यूजिक रहेगा, आनंद बख्शी साहब के लिरिक्स रहेंगे और किशोर दा ही सारे गाने जो हैं वो गाएंगे फॉर काका यानी राजेश खन्ना। अब भाई राजेश खन्ना पे जितने भी पिक्चराइज गाने थे वो किशोरदा कटी पतंग के लिए तो गा ही रहे थे, लेकिन एक ऐसा गाना हुआ जिसमें किशोरदा आउट ऑफ इंडिया थे और शक्ति सामंत को ये गाना पिक्चराइज करना था, शूट करना था, तो फिर उन्होंने मुकेश जी को बुलाया और मुकेश जी ने ये खूबसूरत गाना गाया। वेल, इस गाने में एक बोट है, उस बोट पे काका है, उस बोट पे खूबसूरत ब्यूटीफुल लुकिंग आशा पारेख है वो एंड क्लैड इन अ वाइट साड़ी और उनका वो विंग लाइनर भी लगा हुआ है और राजेश खन्ना नाव चला रहे हैं और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि नैनीताल की नैनी झील का यू नो सीन है। इसी गाने की तरफ आपको ले जाते हुए मैं हूँ श्रेया।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर,
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची पर आने वाला है हिट गाना।

0: only on Radio Mercy New York. It's hot.
1: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

0: अरे आनंद बाबू,
1: आइए आइए आनंद बाबू। आप और इस मंदिर में मुझे पहचाना नहीं?
2: गाइए ना, आप रुक क्यों गए?
3: गाओ ना बेटी, गाओ
2: गाओ।

पुरानी जीन्स में आप श्रेया के साथ और बैक टू बैक आज कटी पतंग फिल्म की बात हो रही है। वेल, अगला जो गाना मैं आपको सुनाने वाली हूँ ना, ये गाना एक्चुअली में एक बंगाली गाने से इंस्पायर्ड था। आर डी बर्मन साहब ने इस गाने को कंपोज किया था, आनंद बख्शी साहब ने इसको लिखा था और पियानो पे बैठे होते हैं काका यानी राजेश खन्ना और आशा पारेख ना उस कश्मकश में है कि अब वो एक विडो हो चुकी हैं, वो इस लड़के की बातों में या इसकी मोहब्बत में नहीं आ सकती, पर दिल कहाँ मानता है ये उनके चेहरे पे साफ दिखता है। सो कहते हैं कि शक्ति सामंत ने जब ये सब्जेक्ट उठाया था तो उन्हें लगा था कि शायद इंडियन ऑडियंस इस बात को एक्सेप्ट ना करेगी, बहुत बोल्ड सब्जेक्ट था, बट देन ही रियलाइज्ड कि कुछ अलग करना पड़ेगा लोगों को, समाज को, जो कुछ ऐसी रीतियां हैं जो यू नो शुड बी चेंज्ड फॉर बेटरमेंट, वो दिखानी पड़ेगी। और तब उन्होंने बनाई कटी पतंग, इट वॉज बेस्ड ऑन अ नॉवल एज वेल। पुरानी जीन्स पे प्यार दीवाना होता है, कमिंग अप राइट नेक्स्ट फ्रॉम दिस फिल्म कटी पतंग। मैं हूँ श्रेया, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: अरे भाई क्यों मार रहे हो इसे?
2: अबे भाई मैंने इससे पूछा क्रिकेट का गोल्ड कौन है,
1: इसे ये नहीं पता।
2: कौन है बता?
1: कोहली।
2: अरे तू भी आस। इधर हमारी विमेंस क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को हरा के एशियन गेम्स में गोल्ड जीता है और तुम दोनों को गोट नहीं पता। तुम दोनों गग गोट हो।
3: वो क्या होता है?
2: गैर गुजरे ऑफ ऑल टाइम
3: इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम। कंग्रेचुलेशंस।
4: इट्स हॉट

बिंदु जी को जब डायरेक्टर शक्ति सामंत ने ये बताया कि उन्हें एक डांस नंबर परफॉर्म करना पड़ेगा, तो बस वो काफी नर्वस हो गई थी, लेकिन वो चाहती थी कि ए ग्रेड फिल्मों में उन्हें किसी तरह एक ओपनिंग मिल जाए। वो बड़े बड़े डायरेक्टर्स के साथ काम करना चाहती थी, तो उन्होंने इस फिल्म में डांस नंबर करने के लिए अग्री कर लिया। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ और मैं बात कर रही हूँ कटी पतंग की, एंड द डायरेक्टर जिन्होंने भाई बिंदु जी को ये बात बोली थी वो शक्ति सामंत, द मैन हु डायरेक्टेड दिस ब्यूटिफुल फिल्म कटी पतंग। लेकिन जब बिंदु जी को ये ब्रीफ मिली कि उन्हें एक कैबरे परफॉर्मेंस देनी है, और वो काफी नर्वस हो गई। वेल, जब ये गाना सामने आया तो लोग तालियों की गड़गड़ाहट से हॉल भर देते थे। बिंदु जी का ब्यूटिफुल एंड वेरी हॉट परफॉर्मेंस इन द सॉन्ग मेरा नाम है शबनम। पंचम दाया ने आरडी बर्मन साहब खुद उतरे थे मैदान में गाने के लिए दिस सॉन्ग विद आशा ताई। इस गाने के बाद बिंदु जी को ढेर सारे ऑफर्स आने लगे। यही गाना कमिंग योर वे। मैं हूं श्रेया ऑन पुरानी जीन्स।

पहचाना? मिले थे कभी उस रात को? डरो नहीं, बात है वो राज की, पर राज ही रहेगा। मेरा नाम है शबनम, प्यार से लोग मुझे शब्बो कहते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? मीना, मीना, अंजू या मंजू? मीना, मीना, अंजू, मंजू या मधु।

उस रोज रात भर शनी बजती रही, मैं थी, तुम थी और वो शर्माओ नहीं, घबराओ नहीं, कहूंगी किसी से नहीं। जानती हो मेरा नाम है शबनम, प्यार से लोग मुझे शब्बो कहते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? मीना, मीना, अंजू या मंजू? मीना, मीना, अंजू, मंजू या मधु।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियास नंबर वन रेडियो स्टेशन. इट्स हॉट.
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट. आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

पुरानी जीन्स में आप और श्रेया के साथ एंड आज कटी पतंग की बातें चल रही हैं और इस फिल्म के गाने. वेल, मुझे लगता है कि उस टाइम के लिए बहुत ही बोल्ड सब्जेक्ट था. आशा पारेख जो कि एक विडो थी, वो प्यार तो करती हैं राजेश खन्ना से, लेकिन वो ये एक्सप्रेस नहीं कर सकती. राजेश खन्ना जो उनसे बहुत प्यार करते हैं समाज के चक्कर में, वो अपनी बातें एक्सप्रेस तो करते हैं पर तो उस टाइम के लिए बहुत ही बोल्ड सब्जेक्ट था. वेल, इस फिल्म के बहुत खूबसूरत गाने हैं जिनको आर डी बर्मन साहब ने कंपोज किया है, लिखने वाले हैं आनंद बख्शी और गाए हैं मोस्ट ऑफ देम किशोर दा ने. सो अगला जो गाना है, मुझे लगता है कि हमारी इंडस्ट्री का पहला गाना था जिसमें ब्रेकअप पे जुबान से भले ही कड़वे शब्द निकल रहे हों हीरो के यानी राजेश खन्ना के, पर जब आप इस गाने का पिक्चराइजेशन देखोगे तो मुस्कुरा रहे हैं और अपना गम ना मुस्कुराहट से निकालते जा रहे हैं. ये जो मोहब्बत है, कमिंग अप राइट नेक्स्ट. मैं हूं श्रेया.

0: सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: कोई यहाँ आह नाचे नाचे

होली पे ये गाना ना चले ऐसा हो ही नहीं सकता है। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ, और मुझे लगता है कि आर डी बर्मन साहब ने और आनंद बख्शी साहब ने, किशोर दा ने मिलकर के ना आपको हमेशा के लिए होली का एक गाना दे दिया इन द फिल्म कटी पतंग। वेल आज इसी फिल्म की बातें हो रही हैं, इसी फिल्म के गाने हो रहे हैं, और ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आप होली सेलिब्रेट करो और ये गाना ना हो। वेल इस गाने में ना काका यानी राजेश खन्ना कोशिश तो करते हैं कि वो आशा पारेख को कलर लगाएं, लेकिन नहीं नहीं नहीं, क्योंकि आशा पारेख एक विडो दिखाई गई हैं उस ज़माने की, तो ये करना पॉसिबल नहीं था। लेकिन उनको छेड़ते हुए वो बाकी सबको कलर लगा देते हैं। आज ना छोड़ेंगे बस, समझो ली। कमिंग अप राइट नेक्स्ट, मैं हूँ श्रेया ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर,
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में। अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट,
1: ओनली ऑन रेडियो मिर्ची। इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

आरटी बर्मन साहब और आनंद बख्शी ने मुझे लगता है कि अपने सारे मेलोडीज का जो बटुआ होता है ना वो खाली कर दिया था इन दिस फिल्म। पुरानी जीन्स पे आप और श्रेया के साथ कटी पतंग की बात हो रही है और मैं बातें कम इस फिल्म के गाने ज़्यादा सुना रही हूँ। वेल जनरली ऑल ऑफ द सॉन्ग्स ऑफ दिस फिल्म वर पिक्चराइज ऑन ऑफकोर्स काका यानी राजेश खन्ना एंड फिल्म की हीरोइन आशा पारे, लेकिन ज़्यादातर गाने जो है ना लाइक 10 में से जो 9 गाने नहीं 8 गाने हैं वो किशोर दा ने गाए हैं या फिर मुकेश जी ने गाए हैं, यानी दे आर पिक्चराइज ऑन काका। लेकिन एक गाना जो कि लता जी ने गाया है जो पूरी फिल्म की थीम पे है कि कैसे आशा पारेख जो एक विडो हैं, बचपन में ही कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से यू नो वो एक विडो हो जाती हैं, वो चाहती तो हैं कि उनकी जिंदगी फुल पतंग की तरह उड़े, लेकिन क्योंकि समाज में ऐसे रीति रिवाज हैं कि उनकी जिंदगी कटी पतंग हो गई है। एंड इस गाने में ना राजेश खन्ना एक कमरे में बंद हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि वो दूर हो जाए आशा पारेख से, वो उनसे प्यार ना कर बैठे, पर ऐसा होता कहाँ है। दिल और प्यार उस इंसान को ना उसका कास्ट रिलीजन उसकी सिचुएशन देख करके नहीं आता, ये तो बस आ जाता है सामने वाले पे प्यार। यही गाना कमिंग योर वे, मैं हूँ श्रेया ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: अरे भाई क्यों मार रहे हो इसे?
2: अबे भाई मैंने इससे पूछा क्रिकेट का गोल्ड कौन है,
1: इसे ये नहीं पता।
2: कौन है बता?
1: कोहली।
2: अरे तू भी आस। इधर हमारी विमेंस क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को हरा के एशियन गेम्स में गोल्ड जीता है और तुम दोनों को गोल्ड नहीं पता। तुम दोनों गग गोल्ड हो।
3: वो क्या होता है?
2: गैर गुजरे ऑफ ऑल टाइम
3: इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम। कंग्रेचुलेशंस।
4: इट्स हॉट।

0: only on Radio Mercy, New York. It's hot.
1: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ, इट्स टाइम फॉर मी टू गो, बट ऐसे कहाँ जाती हूँ, हाईवे पे आपको लेके जाऊंगी। वेल, आज का मेरा हाईवे हिट उन लोगों पे है जो चाहते हैं कि उनकी जाना जो है वो थोड़ी देर और रुक जाए, उनसे दो बातें और करके जाए, लेकिन जाना तो घर वापस जाना चाहती है और वो ज़्यादा दिखाना भी नहीं चाहती है लोगों को कि वो आपसे मिलने आई थी, लेकिन आप चाहते हैं कि दो से और चार बातें हो जाएं। तो भाई आपके लिए गाना, दिस इज श्रेया साइनिंग ऑफ। इफ यू वॉन्ट टू स्पीक विद मी ऐसे वन टू वन तो फेसबुक और इंस्टा पे आरजे श्रेया विद लव, दैट्स माई हैंडल। ऑन दैट नोट, गुड नाइट।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: इधर।
1: अरे भाई क्यों मार रहे हो इसे?
0: अबे भाई मैंने इससे पूछा क्रिकेट का गोल्ड कौन है,
1: इसे ये नहीं पता।
0: कौन है बता?
1: कोहली।
0: तू भी यस। इधर हमारी विमेंस क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को हरा के एशियन गेम्स में गोल्ड जीता है और तुम दोनों को गोल्ड नहीं पता। तुम दोनों गग गोल्ड हो।
2: वो क्या होता है?
0: गैर गुजरे ऑफ ऑल टाइम
2: इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम। कंग्रेचुलेशन।
3: इट्स हॉट।

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला। ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची पर आने वाला है हिट गाना।

0: अरे भाई क्यों मार रहे हो इसे?
1: अबे भाई मैंने इससे पूछा क्रिकेट का गोल्ड कौन है,
0: इसे ये नहीं पता।
1: कौन है बता?
0: कोहली।
1: तू भी
2: आस। इधर
1: हमारी विमेंस क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को हरा के एशियन गेम्स में गोल्ड जीता है और तुम दोनों को गोल्ड नहीं पता। तुम दोनों गग गोल्ड हो।
0: वो क्या होता है?
1: गैर गुजरे ऑफ ऑल टाइम
0: इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम। कंग्रेचुलेशंस।
3: इट्स हॉट।

रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, इट्स हॉट।

0: बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ।
1: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन, इट्स हॉट।

0: जो सुनता है सबकी करे उसका ध्यान, देवराग के साथ सुबह सबसे पहले लें उसका नाम।
1: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, साउथ एशिया नंबर 1 रेडियो स्टेशन, इट्स हॉट।

0: बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ।
1: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, साउथ एशिया नंबर 1 रेडियो स्टेशन। इट्स हॉट।

0: Sí.
1: जो सुनता है सबकी करे उसका ध्यान, देवराग के साथ सुबह सबसे पहले ले उसका नाम।
2: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन, इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: समय के साथ खुद को अपग्रेड करना एक स्मार्ट चॉइस क्यों होती है, आइए समझें।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: सिस्टर श्रेया, हाल ही में मैंने एक कई दिनों से सोच रहा था, एक AI का कोर्स किया और मुझे तो बहुत मजा आ रहा है, बिकॉज सडनली जिस तरह से मैं AI को समझ रहा था, जिस तरह से उसके बारे में बात कर रहा था कुछ दिनों पहले तक, और अब जिस तरह से बात कर रहा हूँ, समझ रहा हूँ, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। हम सबको लगता है कि पढ़ने से, अखबारों में पढ़ने से, इंटरनेट पे पढ़ने से हमको AI समझ में आ जाता है, ऐसा नहीं होता। और फिर मैं, क्योंकि मेरी बेटी के एग्जाम्स के सिलसिले में कई लोगों से बात कर रहा हूँ, करियर काउंसलिंग कर रहा हूँ, कुछ बच्चों से मैं मिला, तो एक बच्चा मुझे कह रहा है कि भाई मेरे 4 साल के इंजीनियरिंग डिग्री का क्या फायदा है, कुछ सालों में तो सब कुछ AI कर लेगा, मेरी तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर मैं अपने ऑफिस में एक 45 साल के लगभग एक अकाउंटेंट से मिला, कहता कि महीनों में जो मैं करता हूँ वो GPT 10 सेकंड में कर देता है। फिर एक दुकानदार से मिला, वो कहता है कि 10 सेकंड छोड़िए, हमारा धंधा तो बहुत पहले ही बहुत सारे बड़े बड़े जायंट्स ने ऑलरेडी ले रखा है, हमारा बिजनेस ठप पड़ा हुआ है। तो जब मशीन धीरे धीरे सारा काम करने लग गई या लग जाएगी कुछ दिनों में, और बहुत फास्ट डेवलपमेंट हो रहा है, तो इंसान की वैल्यू क्या बचेगी?
4: सी, ये कॉमन क्वेश्चन है आजकल, आप देखेंगे कोई पॉडकास्ट है हर जगह पर ये आता है। आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑन दिस, बट फिर भी जो हम देखते हैं कि किसी भी चीज का फियर होने के जगह ये जरूर होना चाहिए कि हम किस तरह से अपने को अपग्रेड कर सकते हैं। वन, कि अगर हमें रेलेवेंट रहना है, एंड दैट इज वाई जैसे आपने भी कहा, आपने AI का कोर्स किया, आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल जिन्होंने एकदम रियलाइज किया कि अभी इसकी बहुत जरूरत है, वो तभी रेलेवेंट रहेंगे जब वो ये कोर्स करेंगे, तो कईयों ने ये कोर्स किया। तो पहली चीज, हम अपने को अपग्रेड करते रहे, डरे नहीं।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। It's hot.

पॉजिटिविटी कोई लोकेशन थोड़ी है कि मैप पे डाला और पहुंच गए। इट्स अ जर्नी। चलो इस जर्नी पे विद मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: 5G Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: किसी एक बात पर कॉन्स्टेंट डिस्कशन हमारी मेंटल पीस को कैसे अफेक्ट कर सकता है, आइए समझे।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: एआई के फियर से ज्यादा जो चीज हमें डिप्लीट कर रही है ना, वो इसके बारे में कॉन्स्टेंट कॉन्वर्सेशन, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, और जो कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं वो कोई एक्सपर्ट नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि जो कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं वो एक्सपर्ट है। अगर उस फील्ड का कोई एक्सपर्ट है तो वो आपको दोनों चीज़ें बताता है। वो ये कहता है कि हाँ हाँ फ्यूचर में ऐसा हो सकता है इन जॉब्स के ऊपर, वो रियलिटी बताते हैं ये जॉब्स की वैल्यू नहीं रहेंगे, और फिर वो ये भी बताते हैं कि आपको क्या करना चाहिए जिससे आप रेलिवेंट रह सकते हैं। एंड एट द सेम टाइम थोड़ा हमारा जो लाइफस्टाइल अभी हो गया है उसमें स्पेंडिंग ज़्यादा है, सेविंग्स काफ़ी कम है, वो फियर बना रहता है जॉब लॉस का। अगर मुझे ऐसा लगता है कि आपको ऐसा लगता भी है कि कभी कोई टाइम ऐसा आ सकता है आपके जीवन में, डिफ़िकल्ट टाइम आ सकता है, पिछले 2-3 सालों से चाहे वो AI है, चाहे वो एक कॉन्स्टेंट ले ऑफ्स इंडस्ट्री के अंदर है, एंड इट इज़ ऑलमोस्ट इन एवरी इंडस्ट्री, आप देखें चाहे वो IT की थी, चाहे वो मीडिया की इंडस्ट्री है, उससे क्लियर आपको मना कोई अगर सीखना चाहे तो वो समझता है कि मेरा जीवन ऐसा होना चाहिए जिसमें सेविंग ज़्यादा है, खर्चे कम है, आई एम नॉट डिपेंडेंट। हमारे को जो ज़्यादा चिंता होती है ना वो सोच सोच के होती है, बोझ जो होता है वो सोच का होता है। सोच कहती है क्या होगा क्या होगा क्या होगा, व्हाई नॉट मेक सम चेंजेस इन योर लाइफ। आप अपनी लाइफ को इतना सिंपल कर दें, अपने खर्चों को थोड़ा सा कम कर दें, अपनी सेविंग्स को थोड़ा बढ़ाने लग जाएं, तो फिर ये कुछ चीज़ें आपके ऊपर इतना प्रेशर नहीं डालेंगे जितना अभी डाल रहे हैं। दिस इज़ व्हाट आई फील। बाकी तो जो होगा हम सब मिल करके देखेंगे।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। It's hot.

थॉट। हेल्दी माइंड के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते। टिल देन सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्र विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: जब बुजुर्ग अपने बच्चों को लेकर कंप्लेन करने लगे तब बच्चों को उनकी इमोशनल स्टेट को कैसे समझना चाहिए, आइए समझते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: सिस्टर, मैं सुबह ना वॉक करने जाता हूँ, तो वॉकिंग करते करते क्या होता है कई बार साथी बन जाते हैं, और इत्तेफाकन क्या हुआ कि मेरे साथी 15 साल के बच्चे भी हैं और 60 साल के लोग, 70 साल के लोग भी हैं, और बहुत मजा आता है सुबह, सब अच्छे मूड में होते हैं, सुबह का माहौल भी बड़ा अच्छा होता है। तो कुछ दिनों से मैं एक 60 70 80 साल के जो ग्रुप हैं उनके साथ बैठ के वहाँ चाय वगैरह भी पीता हूँ, तो जो कॉमन भाषा जो उनसे मैं सुनता हूँ, अरे बच्चे सारे बाहर चले गए, उनको हमने 30 40 साल हमने उनको सेटल करने में लगा दिया, हमने अपनी जिंदगी दे दी और वो आज हमें फोन भी नहीं करते। तो ये कॉमन रिफ्रेन है जो मैं सुनता हूँ, वॉकिंग ग्रुप में सुनता हूँ, जब मैं किसी फेसबुक ग्रुप में पोस्ट में देखता हूँ वहां पे भी सुनता हूँ, मैं मंदिर जाऊं वहां पे भी सुनता हूँ, मैं जहां भी जाऊं ये बहुत कॉमन रिफ्रेन है कि बच्चे तो बाहर चले गए, हमने उनके लिए बहुत कुछ किया और वो हमें फोन भी नहीं करते, हम यहाँ बैठे बैठे घड़ी देखते रहते हैं, फोन उनका नहीं आता। तो व्हाट आई रियलाइज्ड इज बुजुर्ग जो हैं उनके लिए एक्चुअली समय से ज्यादा जरूरी पैसा नहीं है, उनको वक्त की बहुत जरूरत है। लेकिन धीरे धीरे मैं ये भी रियलाइज कर रहा हूँ वो अपने आप को धीरे धीरे इररिलेवेंट समझने लग गए, तो इससे वो कैसे बाहर आए?
4: इसमें दो चीजें हैं। पहली चीज तो देखो, हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर हमेशा ऐसा होता था कि पहले बड़े बच्चों को संभालते थे
3: जी,
4: फिर बच्चे बड़ों को संभालते थे। मतलब हमारी कंट्री के अंदर ये ओल्ड एज होम होना ये सब नहीं था, इसकी जरूरत भी नहीं थी, एंड इट वर्क्ड वेरी वेल। क्योंकि जैसे आपने कहा कि कितनी भी धन हो, कितना भी संपत्ति हो, लेकिन ज़रूरी होता है प्यार, अफेक्शन, जब वो परिवार के साथ हैं, ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, ग्रैंड चिल्ड्रन उनके फ्रेंड्स बन जाते हैं, तो उनको पता नहीं चलता कि समय कहाँ चला जाता है। दैट इज़ वन एस्पेक्ट कि वो ज़रूरी था, एक बच्चे का हम कहते थे कर्तव्य है। बट एट द सेम टाइम अगर आप वर्ल्ड के सिनारियों को चेंज होते हुए देखें, तो जिस बच्चे को हम आज पढ़ाते हैं, हम कहते हैं हमने उसमें बहुत इन्वेस्ट किया, अब मैंने कई बार ऐसा देखा है वेरी क्लोजली कि उन बच्चों को नौकरी बाहर मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक स्मॉल सिटी से हैं, आप उसको एक अच्छे बोर्डिंग स्कूल में पढ़ाते हैं, फिर आप उसको एक अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, अब उसको जो जॉब मिलती है वो भी एक सिटी में ही मिलती है।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
5: टाइप सी केबल के साथ फोन तो चार्ज कर लोगे, खुद को कैसे चार्ज करोगे? मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: पेरेंट्स और बच्चे एक कॉमन ग्राउंड पर आकर मिसअंडरस्टैंडिंग को कैसे हैंडल कर सकते हैं, आइए समझे।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: मतलब बच्चों के भविष्य के लिए पेरेंट्स भी यही चाहते हैं कि भाई वो सेटल हो जाए।
4: वो भी चाहते हैं, मतलब उसमें कोई बच्चे का भी फॉल्ट नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि वो अपने पेरेंट्स को छोड़कर जाना चाहता है, पर उसको भी करियर बनाने के लिए जाना पड़ता है। फर्स्ट चीज कि उसकी भी ये मजबूरी हो जाती है। सेकेंड, जब तक वो अपनी फैमिली को सेट करता है, तो अब आप देखें कि उस समय पर एक फैमिली को संभालना और इस समय पर एक फैमिली को संभालना,
3: बहुत फर्क है।
4: उसमें बहुत फर्क है
3: जी।
4: इस समय पर उनकी डिमांड ज्यादा है, एजुकेशन के प्रति टाइम देना, खर्चे ज्यादा हैं, तो उसको इस फैमिली के अंदर भी बहुत इन्वेस्ट करना पड़ता है। हाँ, मतलब वो ऐसा नहीं है कि उनको निग्लेक्ट कर रहे हैं, पर वो भी उतना टाइम दे नहीं पाते। बट एट द सेम टाइम आई फील कि जो आप कह रहे हैं कि वो फोन भी नहीं करते या बात भी नहीं करते, उतना तक इग्नोर नहीं करना चाहिए। जो चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है वो अंडरस्टैंडेबल है। अगर जो चीज़ कंट्रोल में है, फॉर एग्जांपल आप अपने पेरेंट्स को ले आए, पर कई बार मैंने देखा पेरेंट्स भी नहीं आना चाहते। बच्चे तो कई बार कहेंगे हम विदेश में हैं, आप वहाँ आ जाओ, हम सिटी में, आप वहाँ आ जाओ, पर उनका अपना फ्रेंड्स का ग्रुप होता है, अपना सेटअप होता है, अपना कंफर्ट जोन होता है, वो नहीं आना चाहते, विच इज़ ओके, बट आप ऑफर करते हैं। सेकेंडली, कम से कम आप उनको रोज़ कॉल तो करें, कॉल करके पूछना वो ठीक है, आजकल टेक्नोलॉजी के कई साधन हैं, कुछ फेस टाइम है। अगर उस पेरेंट की आश है कि मैं एक बार आपको दिन में देख लूँ, मैं एक बार अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को देख लूँ, मैं एक मिनट आपसे बात कर लूँ, और इतनी चीज़ भी अगर उनको सेटिस्फाई करती है, तो मुझे लगता है इतना समय निकाल करके हमें करना चाहिए। कभी कभी ये भी देखा गया है कि जो बुज़ुर्ग हैं वो फिर कई बार बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हो जाते हैं, अपना ध्यान नहीं रखते हैं, इतने ज़्यादा बीमारियों के आदि भी हो जाते हैं

0: आज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
1: इससे जब हम पेरेंट्स की बात कर रहे हैं, जब वो थोड़े बुजुर्ग हो जाते हैं और बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं या बच्चे बाहर सेटल हो गए हैं, ज्यादातर पैसे या फिर समय की बात नहीं होती, पर्पस की बात होती है, क्योंकि उनको सडनली लगता है अब हमारा जिंदगी में पर्पस नहीं रहा, और वो धीरे धीरे अपने आप को इररेलेवेंट समझने लगते हैं। तो एक हमने बात की जिसमें कि बच्चों को क्या क्या करना चाहिए, वो एस्पेक्ट हमने कवर किया। लेकिन जो बुजुर्ग हैं आज, जो 70 साल की उम्र या 80 साल की उम्र है और जिनके बच्चे बाहर हैं और वो अकेलापन महसूस कर रहे हैं, उनको लगता है हमारी जिंदगी का कोई पर्पस ही नहीं है, बच्चों के कारण ही हम हैं, उनके लिए क्या संदेश है?
2: सर, मुझे लगता है जब तक आपकी फैमिली थी तो बहुत जरूरी था आपके लिए काम करना और धन कमाना। एक धन बहुत बड़ा पर्पस ही हो जाता है उस समय पर। डेफिनेटली आप जो कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन मनी एक बहुत बड़ी प्रायोरिटी होती है। किसी किसी घर में आप अकेले कमाने वाले होते हैं, लेकिन जब आपकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल्ड हो जाती है, आप 60-70 के बात कर रहे हैं, आप रिटायर्ड हैं, तो फिर आपके जीवन का पर्पस होना चाहिए सेवा, जो हमारी भारतीय संस्कृति में भी सिखाया जाता है, टू गिव बैक। आप अपने को भी एम्पावर करते हैं, चाहे वो मेडिटेशन से है, चाहे वो सत्संग से है। आई सी लॉट ऑफ पीपल जो कहीं पर ग्रुप्स में बैठ, टाइम है उनके पास
1: जी।
2: ऐसा नहीं है कि टाइम नहीं है, लेकिन वो उस टाइम को इधर उधर की बातें करना ज्यादा पसंद करते हैं। मैं ये नहीं कहती वो राइट है कि रॉन्ग है, लेकिन अगर वो वही टाइम थोड़ा सा भी अपनी पर्सनल ग्रोथ में लगाएंगे तो उनके मन में इतनी नेगेटिव थिंकिंग नहीं होगी, इतनी एक्सपेक्टेशन भी नहीं होगी, इतनी डिजायर भी नहीं होगी, क्योंकि वो सत्संग ही, वो परमात्मा की याद या मेडिटेशन या कोई स्क्रिप्चर या कुछ उनको भरेगा, उनको वो खालीपन महसूस नहीं होगा। एक अच्छा संघ, एक अच्छा वायुमंडल का संघ, एक अच्छा कम्युनिटी का संघ उनकी ग्रोथ का आधार बन जाएगा। एंड देन व्हेन यू विल बिकम फुल, यू विल आल्सो बिकम अ मीडियम टू गिव, चाहे मनसा से, चाहे वाचा से, चाहे कर्मणा से, आप कहीं पर भी सेवा कर रहे हैं, आप फिर सिर्फ अपने बच्चों पर डिपेंडेंट नहीं होते
1: जी।
2: आप जो सेवा करते हैं उससे आपको दुआएं मिलती हैं, उससे आपको खुशी मिलती है, भरपूर फील करते हैं। तो व्हाई नॉट यूज दैट टाइम आप अपनी पर्सनल ग्रोथ और सेवा के लिए यूज करें।
1: और एक्चुअली मैंने देखा जो बिजी होते हैं ना, उनसे बात करने में भी मजा आता है, बिकॉज दे हैव अ लॉट टू कंट्रीब्यूट। वो उस कॉन्वर्सेशन में भी हिस्सा लेते हैं, वो बताते हैं कि आज मेरे दिन में ये हुआ, आज मैं इससे मिला। तो वो केवल सुन नहीं रहे होते हैं, वो कॉन्ट्रीब्यूट भी कर रहे होते हैं।
3: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्र विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: जब बुजुर्ग खुद को इररिलेवेंट या इग्नोर्ड फील करने लगे तब फैमिली को क्या करना चाहिए, आइए जानें।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिच।

पॉजिटिविटी कोई लोकेशन थोड़ी है कि मैप पे डाला और पहुंच गए। इट्स अ जर्नी। चलो इस जर्नी पे विद मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: जब हम अपनी सेल्फ आइडेंटिटी को सिर्फ अपने रोल या रिस्पॉन्सिबिलिटीज से जोड़ने लगे तब क्या करें, आइए समझें।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: हम अभी धन नहीं कमा रहे या अगर हमारी कोई पोजीशन नहीं है तो हम इरेलेवेंट है। तो हमने सारा जीवन जो अपनी सेंस ऑफ आइडेंटिटी बनाया है वो अपने रोल से बनाया है
4: जी।
3: हमें लगता है कि हम तब तक ही वैल्यूबल हैं
4: जब तक लोग हमारी सुनते हैं,
3: नहीं जब तक हमारी कोई पोजीशन है या जब तक हमारा कोई प्रोफेशन है। दैट इज ओनली व्हेन पीपल विल रिस्पेक्ट मी।
4: पोजीशन कभी कभी हेड ऑफ द फैमिली भी होता है ना, कि लोग मेरे सुनते हैं, मैं हेड ऑफ द फैमिली हूँ। और जब
3: पर हर रोल जाएगा, लेट पीपल लाइक यू फॉर हु यू आर
4: इंस्टेड ऑफ व्हाट यू आर
3: और व्हाट यू हैव एक्वायर्ड। क्योंकि जो आपने एक्वायर किया है
4: वो तो जाएगा।
3: वो कोई भी परमानेंट तो है नहीं। पहले तो फिर कुछ फिक्स टाइम होता था, अच्छा 58 में रिटायर होंगे, अब 65 में ही होंगे। आज के समय पर तो इतनी इनसिक्योरिटी है, आपको कुछ भी नहीं पता कि जो रोल आज आपके पास है वो रोल 6 महीने के बाद भी आप तक रहेगा कि नहीं रहेगा। तो इतनी जब अनसर्टेनिटी है तो अपने रोल से आप इतना अटैच्ड नहीं हो सकते। सेंस ऑफ आइडेंटिटी जो है, सेल्फ वर्थ जो है, इट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट आई अक्वायर। आई एम सेपरेट फ्रॉम व्हाट आई डू। हम दोनों को मिक्स कर देते हैं। तो हम डूइंग से अपनी सेल्फ वर्थ बनाना शुरू कर देते हैं, इसीलिए हमें इररिलेवेंट लगता है।
0: रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Energy, it's hot.
1: Healthy mind के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते. Till then, सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 only on मिर्ची, it's hot.

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: खुद को इतना जेन्युइन कैसे बनाएं कि लोग आपको आपकी पर्सनालिटी से याद रखें? आइए जानते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: एक बहुत कमाल की चीज है सिस्टर, मैं ट्रेनिंग में कई बार करता हूँ, मैं जब लोगों से मिलता हूँ पहली बार तो मैं उनसे पूछता हूँ, आप प्लीज अपना इंट्रोडक्शन दें मुझे ताकि मैं आपको जान सकूँ, और आप बताएं आपका नाम क्या है, आप क्या करते हैं और कहाँ से आए। बेसिकली मैं उनको बोलता हूँ, मैं जानना चाहता हूँ आप कौन हैं। तो जब मैं उनसे पूछता हूँ आप कौन हैं, वो ज्यादातर बोलते हैं मेरा नाम ये है, मैं यहाँ से आया हूँ, और मैं फिर वो अपना डेजिग्नेशन बता देते हैं जो वो करते हैं, तो मैं सुन लेता हूँ और वो नोट कर लेता हूँ। आखिरी दिन जब होता है ट्रेनिंग का तो मैं उनको फिर से उस दिन की याद दिलाता हूँ, और मैं उनको बोलता हूँ कि मैंने आपसे पूछा था कि आप कौन हैं, और आपने मुझे बोला कि मैं फला फला हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, और मैंने आपसे आपका डेजिग्नेशन या आपका रोल नहीं पूछा था, मैंने सिर्फ ये पूछा था कि आप कौन हैं। और सडनली जिस तरह के रिएक्शन या रिस्पॉन्स उस समय आता है और जितना भरपूर वो महसूस करते हैं, क्योंकि उसके बाद जो इंटरेक्शन होता है वो बहुत कमाल का होता है। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ज्यादातर हम अपने डेजिग्नेशन से, अपने रोल से, हम क्या करते हैं उससे ज्यादा अटैच्ड होते हैं, बजाय इसके कि हम दरअसल अंदर क्या हैं। और ये बहुत जरूरी है समझना, जिस दिन हम समझ जाते हैं ना, उस दिन सडनली अ लॉट ऑफ एवेन्यूज ओपन अप।
4: सी द पर्पस ऑफ लाइफ इज टू बी, द पर्पस ऑफ लाइफ इज नॉट टू डू, इट्स बीइंग पीसफुल, बीइंग हैप्पी, बीइंग कंटेंट। यू आर ह्यूमन बीइंग, यू आर नॉट ह्यूमन डूइंग। वो अलग बात है कि जब आप उस बीइंग की अवेयरनेस में होते हैं तो वो जो आपकी क्वालिटी है वो हर डूइंग में रिफ्लेक्ट होती है। जब वो हर डूइंग में रिफ्लेक्ट होती है तो आपका एक रिश्ता हर एक के साथ बनता है, और वो जो रिश्ता है, देन द पीपल आर नॉट लाइकिंग यू ओनली फॉर व्हाट यू आर डूइंग,
3: फॉर द पर्सन यू आर,
4: फॉर द पर्सन हु यू आर। और कल को आपका रोल भी चला जाएगा
3: फिर भी वो पसंद करेंगे,
4: आप तब भी उनके लिए रेलेवेंट रहेंगे।
3: बिल्कुल,
4: आज आप उनके टीचर हैं, नहीं हैं, कल आपका रोल बदल जाएगा
3: जी।
4: लेकिन वो कहेंगे नहीं मेरी वो टीचर, आज आप टीचर है भी नहीं।
3: हाँ बिल्कुल, होता ही है, स्कूल के टीचर सबसे ज्यादा
4: वो सब रिटायर हो गए हैं, कोई है कोई नहीं है, पर एंड दैट टीचर वाज रेलेवेंट सिर्फ अपने पढ़ाने के लिए नहीं, क्योंकि उसकी बीइंग में मतलब कुछ उसकी क्वालिटी थी जिसका इम्पैक्ट उस बच्चे पर पड़ा, और वो इम्पैक्ट उसके ऊपर ऐसा पड़ा विच वाज ट्रांसफॉर्मिंग।
3: इसलिए सारे टीचर याद नहीं रहते, चंद एक दो हमेशा याद रहते हैं, क्योंकि उन्होंने आप पे बहुत बड़ा एक गहरा एक अपनी जो छाप छोड़ी है,
4: जीवन पर छोड़ी होती है।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी।
2: सिस्टर शिवानंद नारगंड से लिखते हैं और उनका सवाल है कि क्या मानसिक स्वास्थ्य पर काबू सिर्फ ध्यान से काम कर सकता है या अलग अलग काम करने से मन को काबू हम कर सकते हैं, इसमें कौन सा सरल और सुंदर मार्ग है?
3: सी, मन को पावरफुल बनाने के बहुत तरीके हैं, उसमें मेडिटेशन सबसे पावरफुल टूल है।
2: जी,
3: ये सबसे पावरफुल टूल है क्योंकि आप कॉन्शियसली अपने मन को दिशा दे रहे हैं। लेकिन अगर आप वो नहीं कर पा रहे हैं अभी, जैसे एक पंछी को उड़ने के लिए दोनों पंख चाहिए।
2: हाँ।
3: अगर वो एक पंख से उड़ता है तो उड़ तो सकता है लेकिन थोड़ी हाइट तक उड़ करके गिर जाता है।
2: जी।
3: ऐसे ही मेडिटेशन के अंदर नॉलेज और मेडिटेशन ये दो पंख होते हैं।
2: अच्छा।
3: क्योंकि हमने जैसे कई बार बात करी है कि अगर आपको नॉलेज ही नहीं है
2: तो फिर आप करेंगे कैसे,
3: आप कैसे अपने अपने थॉट्स को कैसे दिशा देंगे। समझो, मुझे ये थॉट आ रहा है अंदर में कि पता नहीं क्या होगा, एग्जाम में पास होगा कि नहीं होगा, इंटरव्यू क्लियर होगा कि नहीं होगा, इतनी बड़ी बीमारी है, पता नहीं डॉक्टर, दिस इज माई नेगेटिव थिंकिंग। अब मेरे पास कुछ तो नॉलेज चाहिए ना जो मैं अपने मन को ट्रांसफॉर्म करके कह सकूं कि नहीं, बहुत अच्छा होगा, अगर नहीं भी इंटरव्यू क्लियर हुआ तो एक दरवाजा बंद होगा तो दूसरा खुल जाएगा, या बीमारी है तो शरीर को है, मैं बीमार नहीं हूँ, मेरा शरीर बीमार है, अच्छा इलाज लेंगे, अच्छा डॉक्टर लेंगे, ठीक हो जाएगा। ना, ये ट्रांसफॉर्म करने के लिए और स्टेबल फील करने के लिए आपके पास ज्ञान चाहिए।
2: जी।
3: ज्ञान बोलो, नॉलेज बोलो, विजडम बोलो, सत्संग बोलो, सत्य का संग। कुछ हम अच्छा सुनते हैं तो हम अच्छा सोच पाते हैं, तो ये दो चीजें तो बहुत इम्पोर्टेंट है। तीसरा, सेवा भी आपके मन को बहुत एम्पावर करती है। आप किसी की सेवा करते हैं उससे दुआ मिलती है।
2: हाँ।
3: वो प्योर एनर्जी भी आपके मन को शांत करती है। तो कोई भी ऐसी एक हैबिट जो आप किसी की मदद कर रहे हैं, किसी बुजुर्ग की कोई सेवा करते हैं, किसी फिजिकली हैंडीकैप्ड की कोई मदद करते हैं, वो दुआ भी आपके पाप को काटती है, पुण्य को जमा करती है, आपके मन की हीलिंग करती है।
2: बहुत बढ़िया।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

कैसे हो के जवाब में ठीक हूँ कह देने से कोई ठीक नहीं हो जाता। ठीक हूँ से मस्त हूँ कहने के लिए सुनिए मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट
1: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला ओनली ऑन रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क इट्स हॉट

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: देखो लाइफ में ना दो चीजें बिना वार्निंग के स्टार्ट हो जाती है, एक तो मंडे और दूसरा किसी के लिए अटैचमेंट। गुड मॉर्निंग गाइस, मैं हूं प्रिसिला तुम्हारे साथ में, सुन रहे हो मिर्ची मॉर्निंग्स। तुम्हारी मॉर्निंग की मैं वो दोस्त हूँ जो कॉफी से पहले तुम्हें जगा देती है, फिर बोलने लगती है एंड समहाउ एक्सपेक्ट्स यू टू लिसन एंड यू डू लिसन टू मी। सो अभी फिलहाल तुम ड्राइव कर रहे हो अपने कामकाज की तरफ, या फिर पैक कर रहे हो अपना लंच, या फिर ड्रॉप कर रहे हो अपने बच्चों को, या फिर उनके टिफिन पैक कर रहे हो, या फिर यू आर जस्ट वर्किंग फ्रॉम होम और प्रिटेंडिंग टू वर्क फ्रॉम होम। व्हाटएवर यू आर डूइंग, आई विल बी विथ यू फॉर अ फ्यू आवर्स। आज का एजेंडा जो है

0: वाला है. साउंड्स गुड राइट. तो अब तुम्हारे दिन को मिर्चीदार बनाने के लिए और कुछ नहीं चाहिए सिवाय इसके कि वॉल्यूम करो फुल, स्माइल करो ब्यूटीफुल और सुनते रहो मिर्ची पर प्रिस्टला को. बिकॉज घर से हजारों माइल्स दूर रहने के बाद भी तुम्हारा देसी कनेक्शन जो है घर से मैं ही हूँ ना. तो मिर्ची प्रिस इज माई हैंडल नेम ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स, दैट इज MIRCHIPRIS. व्हाट्सएप का नंबर 9033647244. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.
1: This is something special.

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: गुड मॉर्निंग, मेरा नाम है प्रिसिला और अब चलो पता करते हैं कि आज के दिन पुराने सालों में क्या हुआ था। 1806 में लुईस एंड क्लार्क एक्सपेडिशन फाइनली रैप्ड अप। मेरीवेदर लुईस एंड विलियम क्लार्क रिटर्न टू सेंट लुई आफ्टर एक्सप्लोरिंग द अमेरिकन वेस्ट। बेसिकली मंथ्स ऑफ ट्रैवल, एडवेंचर एंड अननोन टेरिटरी। आज के जमाने में अगर होते तो प्रॉबेबली बोलते गाइस द ट्रिप वॉज फाइन, लेकिन देयर वॉज नो वाईफाई। 1846 में एस्ट्रोनॉमर योहान गॉटफ्रीड गैले डिस्कवर्ड नेपच्यून, कंफर्मिंग मैथमेटिकल प्रेडिक्शन। मतलब कि पहले मैथ्स ने बोल दिया था कि यहाँ पर एक प्लैनेट होना चाहिए और फिर गैले वाज लाइक यप आई फाउंड इट। 1932 में द किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया वाज फाउंडेड बाय इब्न सऊद और आज सऊदी नेशनल डे इसी माइलस्टोन को कमेमोरेट करता है। 1952 में रिचर्ड निक्सन डिलीवर्ड हिज फेमस टेलीवाइज्ड चेकर्स स्पीच एड्रेसिंग एलिगेशंस अराउंड कैंपेन फंड्स। And finally, 1965 May, the Indo-Pak War ended following a UN-mandated ceasefire, a significant moment in South Asian history. अब हिस्ट्री हो गई है, थोड़ा फ्यूचर की तरफ बढ़ते हैं। आने वाले मिर्ची दर बैंगर्स ओनली फॉर यू। मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में। This of course is मिर्ची मॉर्निंग्स। तो मुझसे कनेक्ट करो इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस और व्हाट्सएप का नंबर 9033647244। Stay tuned and stay hot.

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: मॉर्गेज कभी कभी रिलेशनशिप स्टेटस की तरह हो जाता है, इसीलिए उसके लिए अपडेटेड रहना चाहिए। मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स एंड अपकमिंग इज अ मॉर्गेज अपडेट।
2: गुड मॉर्निंग वेरी मिर्ची लिसनर्स, दिस इज जेसन दोशी फ्रॉम एसडी कैपिटल फंडिंग विद टुडेज एसडीसीएफ मॉर्गेज मार्केट अपडेट। थिंग्स आर स्टार्टिंग टू सेटल डाउन अ बिट। ऑयल प्राइसेस आर बैक डाउन बिलो $100, व्हिच इज हेल्पफुल बिकॉज़ ऑयल प्राइसेस कैन फीड इन्फ्लेशन। However, some officials support more rate hikes in the coming months. So today's mortgage market is basically a tug of war. Falling oil prices are helping rates, but inflation concerns and the Fed are pulling the other way. We expect a 30-year fixed rate to open at 6.75% today. If you're looking to purchase or refinance, we're here to help. Check out our zero closing cost refinance options or lender credits to help offset your closing costs during a purchase. This can be a savings of several thousand dollars. If you're an investor looking to build your real estate portfolio, check out our DSCR loans, which offer competitive rates with no personal income verification. For more information, give me a call directly at 732-429-4050 or visit us at sdcapitalfunding.com. Again, this is Jason Doshi, and give me a call directly at 732-429-4050. And thank you for listening. And as always, welcome home.
1: And there you have it, your mortgage update, minus the financial jargon and headache. मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में मिर्ची मॉर्निंग्स पर। फॉलो करो मुझे इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, एंड व्हाट्सएप का नंबर 9033647244। Stay tuned and stay hot.

0: अरे भाई क्यों मार रहे हो इसे?
1: अबे भाई मैंने इससे पूछा क्रिकेट का गोल्ड कौन है,
0: इसे ये नहीं पता।
1: कौन है बता?
0: कोहली।
1: तू भी
2: यस। दोनों
1: इधर। हमारी विमेंस क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को हरा के एशियन गेम्स में गोल्ड जीता है और तुम दोनों को गोल्ड नहीं पता। तुम दोनों गग गोल्ड हो।
3: वो क्या होता है?
1: गैर गुजरे ऑफ ऑल टाइम
2: इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम। कंग्रेचुलेशंस।
4: इट्स हॉट।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: गुड मॉर्निंग गाइस, here's your मिर्ची मॉर्निंग वेदर अपडेट मेरे यानी कि प्रिसला के साथ में। फिलहाल 53 डिग्रीज फारेनहाइट हो रहा है टेम्परेचर, स्काईज जो है वो क्लाउडी है, लेकिन द विंड इज मेकिंग इट फील क्लोजर टू 47 डिग्रीज फारेनहाइट। सो हाँ भाई, आज टेम्परेचर कुछ और कह रहा है, हवा कुछ और कह रही है, काफी मिक्स सिग्नल्स टाइप का वेदर है आज। आज का हाई जाएगा अराउंड 68 डिग्रीज फारेनहाइट विद अ लो ड्रॉपिंग टू अबाउट 51 डिग्रीज फारेनहाइट। मॉर्निंग में क्लाउड्स होंगे, फिर ग्रेजुअली स्काईज मोस्टली सनी हो जाएंगे एंड बाय नाइट पार्टली क्लाउडी होने वाले। विंड्स जो है 10 टू 16 माइल्स पर आवर फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट एंड ईस्ट आने वाली है। सो अगर तुम ड्राइव कर रहे हो थोड़ा सा एक्स्ट्रा अलर्ट रहना। और रेन ऑलमोस्ट नाडा, चांस जीरो है भाई, सिर्फ 3-10% का चांस है विद जीरो प्रेसिपिटेशन एक्सपेक्टेड ओवर द नेक्स्ट 24 आवर्स। ह्यूमिडिटी जो है वो रहने वाली है 63% एंड आज का हाई जो है इट्स प्रीटी सिमिलर टू यस्टरडेज हाई। सो आज अगर तुम वेदर की कंसिस्टेंसी पर खुश हो रहे हो तो अपनी लाइफ में भी कंसिस्टेंसी बरकरार रखना। कल अगर वर्क आउट किया था तो आज भी करना, कल प्लेंटी ऑफ वाटर पिया था तो आज भी पीना। हैव अ लॉट ऑफ वाटर, कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड, वेयर योर सनब्लॉक एसपीएफ 50+++ वाला, लेयर के प्लेयर बनकर ही बाहर जाना आज के दिन। एक लाइट जैकेट कैरी करो, पेयर ऑफ सनग्लासेस कैरी करो एंड अ लॉट ऑफ पेशेंस विद द विंड एंड साथ साथ में कैरी करो मिर्चीदार वाइब जो मेरे यानी कि प्रिसिला के साथ तुम्हें मिल रही है मिर्ची मॉर्निंग्स पर। ऑफकोर्स मुझे कनेक्ट करो सोशल्स पर भी, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस इंस्टाग्राम और एक्स पर, दैट इज MIRCHIPRIS। आपका नंबर 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Welcome to the second hour of Mirchi Mornings. Main hoon Priscilla tumhare saath mein. Let's get you caught up with what's happening around the world.
0: Mirchi Hour Got 3.
1: सबसे पहले इंडिया मिडल ईस्ट और यूरोप को कनेक्ट करने वाली इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी कि IMEC को US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने स्ट्रांगली बैक किया है। इस प्लान में इंडिया से गल्फ तक एक ईस्टर्न राउट और गल्फ से यूरोप तक एक नॉर्दर्न राउट है रेल और सी कनेक्टिविटी के साथ। नंबर टू पर एन इंडियन एक्सप्रेस रिपोर्ट के बाद इंटरनल डिफरेंसेस को लेकर कॉन्ट्रोवर्सी हुई है इन इंडिया। इलेक्शन कमीशन ने 8-point स्टेटमेंट में कहा है कि इंटरनल नोट्स सजेशंस और डिफरिंग व्यूज डिसीजन मेकिंग का नॉर्मल पार्ट है और उसके मुताबिक पास ईयर के फाइनल डिसीजंस फुल कमीशन के यूनानिमस डिसीजंस रहे हैं। एंड लास्टली CBSE एग्जाम पोर्टल की सिक्योरिटी फ्लोज हाईलाइट करने वाले इंडियन साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर को US डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस हॉल ऑफ फेम में रिकॉग्नाइज किया गया है। निसाग्र अधिकारी नाम के इस बच्चे का कहना है ही फाउंड अ क्रिटिकल वल्नरेबिलिटी इन द DOJ सिस्टम रिपोर्टेड इट एंड द डिपार्टमेंट पैच्ड इट विद इन अ वीक। एंड दैट्स योर मिर्ची आवर का 3 फॉर दिस आवर। फॉलो करो मुझे इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस। एंड व्हाट्सएप पर अपने बर्थडे शाउट आउट्स और रिएक्शन भेज सकते हो 9033 मिर्ची पर। दैट्स 9033 6472 44। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: Fefermirci. Escabana, buscabana, sacabana. Rabana. Burga, burga. La virba la burga.
1: Mirci, burga. हेलो
2: हेलो मुकेश जी,
1: कौन?
2: मुकेश जी मैं ये प्रताप बोल रहा हूँ, राणा मोटर से। आपने जो 1000 दी थी ना, उसका वो जो कार्बोरेटर साफ होना था, वो सर हो नहीं पाया एक्चुअली। थोड़ा
1: नहीं हो पाया भाई?
2: हाँ वो नहीं हो पाया सर।
1: हाँ जी? नहीं हो पाया
2: सर, वो थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। अच्छा सर, आप बता रहे थे ना पीछे बोनेट से आवाज आ रही है आपकी गाड़ी की। सर वो भी हो नहीं पाई है, वो उसमें थोड़ा हो नहीं पाया हमसे अभी।
1: नहीं, क्या नहीं पाया तुम्हारे यार, रोज के तुम्हें जब भी गाड़ी तो नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया, क्या मजाक ही क्या है ये?
2: नहीं मुकेश जी मैं समझ रहा हूँ, वो एक
1: क्या समझ रहे हो भाई?
2: नहीं नहीं आप सही कह रहे हैं। अच्छा मुकेश जी आपने एक बताया था ना ब्रेक ऑयल डलना है, ब्रेक काम नहीं कर रहे। सर वो ऑयल डल नहीं पाया थोड़ा।
1: अरे तो हो क्या पाया है तुमसे
2: सर? वो
1: ये नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया, मुझे फोन करना है, मुझे फोन इसलिए कराया कि ये नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया।
2: नहीं सर
1: एक्चुअली आपको तो फोन इसलिए करना था कि भाई ये जो काम दिया गया आपको वो कर दे।
2: नहीं सर कुछ हो नहीं पाया।
1: क्यों नहीं हो पाया
2: सर? वो रात गाड़ी चोरी हो गई आपकी
1: है?
2: सर रात गाड़ी चोरी हो गई आपकी।
1: अरे तेरा दिमाग खराब है क्या?
2: अरे सर मैं वही आपसे कह रहा हूँ, मतलब हम
1: क्या करा दूँ
2: सर? मतलब आप ये आप आके FIR लिखवा देंगे अपनी गाड़ी की?
1: कैसी FIR? दिमाग खराब हो गया तेरा, पागल तो नहीं है तू?
2: अरे सर जितने की गाड़ी थी इतना दे देंगे, आप गुस्सा तो मत करिए कम से कम।
1: क्या गुस्सा ना करूं, नई गाड़ी थी हमारी।
2: नहीं सर आपकी नई गाड़ी थी तो सर हमारा भी तो उसमें कुछ गया है, हमने भी तो ग्रीस लगाया।
1: उसमें
2: ग्रीस लगाया, उसमें हमने पेट्रोल डाला है।
1: ग्रीस कितने का? 5 रुपए का लगा। आग लगा दूंगा मैं तुम्हारे शोरूम में, तुम्हारे वर्कशॉप में।
2: अच्छा सर,
1: मुझे चाहिए अपनी वापस।
2: सर आप इतना गुस्सा ना करें,
1: जिम्मेदारी तुम्हारी है FIR वगैरह कराने की।
2: सर बिल्कुल आप गुस्सा ना करें। अच्छा सर ऐसा चल सकता है जैसे आप गाड़ी ना लेके कॉम्पोजिट कर दें, हम आज शाम आपको मुर्गा खिला दें और मुकेश वो बन भी गया मुर्गा।
3: मुकेश मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, छोटा सा मजाक किया तुम्हारे साथ, मुर्गा बना दिया तुम्हारा।
1: तो जान निकाल दी हमारी।
3: मुकेश आपकी गाड़ी वही खड़ी है आपकी वर्कशॉप पे, बस उसको धक्का लगाना है और आपको धक्का हम लगा देंगे। मेरे साथ जरा प्यार से कह दीजिए, गुस्सा खत्म करिए।
1: कुकड़ू कू
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: हेलो हेलो, मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में सुन रहे थे मिर्ची मॉर्निंग्स एंड नाउ समथिंग फ्रॉम द एशियन गेम्स।
2: मिर्ची वॉच इट।
1: एशियन गेम्स 2026 से इंडिया की लेटेस्ट अपडेट आ गई है एंड बॉस पोडियम पर अटेंडेंस फुल फॉर्म में है। इंडिया के पास अब तक टोटल 11 मेडल्स आ चुके हैं, 1 गोल्ड, 5 सिल्वर एंड 5 ब्रॉन्ज। और आज के हेडलाइन मेकर पता कौन है? दीपिका शेरावत। विमेन्स हॉकी में थाईलैंड को इंडिया ने 21 से हराया है एंड दीपिका ने अकेले 9 गोल्स ठोक दिए है। और ट्विस्ट ये है कि सारे के सारे पेनल्टी कॉर्नर से, बेसिकली पेनल्टी कॉर्नर मिला नहीं कि दीपिका ने बोला थैंक यू, नेक्स्ट प्लीज। मीरा भाई चानू ने भी वेटलिफ्टिंग के 49 किलो कैटेगरी में 198 किलोस लिफ्ट करके सिल्वर जीत लिया है। और इस मेडल के साथ इंडिया का वेटलिफ्टिंग में 28 साल का एशियाड मेडल ड्राउट जो है वो खत्म हुआ है। शूटिंग में विमेन्स और मेन्स स्कीट टीम ने ब्रॉन्ज सिक्योर किया है और जैमीना ने सॉफ्ट टेनिस में इंडिया का फर्स्ट एवर एशियन गेम्स मेडल ब्रॉन्ज जीता है। और बैडमिंटन में भी ब्रॉन्ज, इंडिया मेंस टीम चाइना से सेमीफाइनल में 3-1 से हारी है, लेकिन ब्रॉन्ज मेडल कंफर्म हो चुका है। सो इंडिया के 11 मेडल्स और काउंटिंग है और गेम्स अभी खत्म नहीं हुए, तो मेडल काउंट को रिफ्रेश करते रहूंगी मैं तुम्हारे साथ। साथ में एक बोनस अपडेट भी देती हूँ, 51-year-old ओक्साना चुसोविटिना वर्ल्ड फाइनल में पहुंच चुकी है 7 एशियन गेम्स अपियरेंसेस के साथ, 8 मेडल ऑलरेडी है एंड शी इज स्टिल गोइंग ऑन। ऑल्दो शी इज नॉट फ्रॉम इंडिया बट आई हैड टू गिव हर एन ऑनरेबल मेंशन बिकॉज वुमेन पावर जो है वो एशियन गेम्स में चमक कर बाहर आ रहा है। अभी फिलहाल बाहर आने वाले हैं मिर्चीदार बैंगर्स लाइंड अप जस्ट फॉर यू। मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में, मुझे जल्दी से फॉलो कर लो, मिर्ची प्रिस इज माई हैंडल नेम इंस्टा और एक्स पर, एंड मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: आज अगर तुम्हारा हैप्पी वाला बर्थडे है तो बधाइयां हो, ढेर सारी कंग्रेचुलेशंस। आज हिस्ट्री के अटेंडेंस रजिस्टर में ऑफिशियली तुम्हारा नाम आ चुका है, बिकॉज सितंबर 23 के बर्थडे बेबीज, हैप्पी बर्थडे। तुम आज अकेले केक कट नहीं कर रहे हो, दुनिया के कुछ सीरियसली इंटरेस्टिंग कूल लोग भी तुम्हारे साथ अपना बर्थडे केक शेयर कर रहे हैं। सबसे पहले म्यूजिक लेजेंड्स की बात करें तो ब्रूस स्प्रिंगस्टीन एके द बॉस और स्पैनिश सुपरस्टार हुलियो इग्लेशियस आर बोथ सितंबर 23 बेबी, मतलब कि तुम्हारे बर्थडे की प्लेलिस्ट ऑटोमेटिकली थोड़ी सी प्रीमियम हो गई है। बॉलीवुड से आइकॉनिक विलन प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा, वो भी आज ही अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। हु इज टर्निंग 91 ईयर ओल्ड टुडे। 380 प्लस फिल्म्स में उन्होंने काम किया है। बर्थडे केक जो है वो शायद इंटरवल के बाद ही कट होने वाला है, बिकॉज उनकी फिल्म्स काफी इंटरेस्टिंग होगी आई एम श्योर। एंड लुक एट दिस कॉम्बो, एंटनी मैकी, जेसन अलेक्जेंडर बेटर नोन एज जॉर्ज कोस्टांजा फ्रॉम साइनफेल्ड, एंड कॉमेडियन हसन मिनाज एंड रैपर प्रोड्यूसर जेरेमाइन डुप्री। देसी ब्रिलियंस भी फुल अटेंडेंस पर है आज। यूफोरिया के फ्रंटमैन पलाश सेन भी आज ही के बर्थडे लिस्ट में शामिल है, एंड ही इज ऑल्सो डॉक्टर एंड ही वेयर्स अ मंगलसूत्र, मतलब बंदा जो है हार्ट ब्रेक भी दे सकता है और प्रिस्क्रिप्शन भी। एंड आज सल्यूट है आसमा चैटर्जी को, जो कि एक केमिस्ट रह चुकी है बहुत ही लेजेंडरी, एंड द लेजेंडरी हिंदी पोएट रामधारी सिंह दिनकर, दोनों की आज बर्थ एनिवर्सरीज भी है। सो आज के दिन तुम्हारा बर्थडे सिर्फ बर्थडे नहीं है, फुल सेलिब्रिटी क्रॉस ओवर एपिसोड है। मैं वो प्रिसिला तुम्हारे साथ में मिर्ची मॉर्निंग्स पर। फॉलो करो मुझे इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS, एंड व्हाट्सएप पर नंबर है 9033647224। अभी के लिए स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: अरे भाई क्यों मार रहे हो इसे?
1: अबे भाई मैंने इससे पूछा क्रिकेट का गोल्ड कौन है,
0: इसे ये नहीं पता।
1: कौन है बता?
0: कोहली।
1: अरे तू भी हंस। इधर हमारी विमेंस क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को हरा के एशियन गेम्स में गोल्ड जीता है और तुम दोनों को गोल्ड नहीं पता। तुम दोनों गग गोल्ड हो।
2: वो क्या होता है?
1: गैर गुजरे ऑफ ऑल टाइम
2: इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम। कंग्रेचुलेशंस।
3: इट्स हॉट।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Hey there, this is Priscilla with you. सुनने वाले हो तुम मिर्ची पर गोल्ड रेट अपडेट.
2: RajJewels.com wishes everyone happy and healthy morning. Gold trading at $4,390. $4,390 पर ट्रायंस के साथ आज सुबह गोल्ड की प्राइस ट्रेड कर रहे हैं. गोल्ड में इन्वेस्ट करना है लेकिन समझ नहीं आता किस प्राइस पे इन्वेस्ट किया जाए. आप 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी खरीदते हैं, समझ नहीं आ रहा कि गोल्ड के ऊपर कितनी लेबर चार्ज ऐड हो रही है. आइए राजज्वेल्स की डॉट टीम से कनेक्ट करें. 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी का प्राइस, उसके ऊपर कितनी लेबर और क्या एडिशनल चार्जेस के साथ आप ज्वेलरी घर ले जा सकते हैं 0% इंटरेस्ट, 0 डाउन पेमेंट के साथ 9 मंथ की फाइनेंसिंग में. राज ज्वेल्स की स्पेशल फाइनेंसिंग ऑप्शन जिसमें अप्रूव होने पे आज ज्वेलरी घर जाती है और 9 किश्तों में राज ज्वेल्स की टीम को पैसे मिलते हैं. आइए गोल्ड में इन्वेस्ट करें RajJewels.com के साथ. थैंक यू. हैप्पी मॉर्निंग टू ऑल.
1: एंड दैट्स इट फॉर योर गोल्ड रेट का लेटेस्ट अपडेट एक्सक्लूसिवली ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स विद मी प्रिसिला. कनेक्ट करो मुझसे इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस एंड व्हाट्सएप पर नंबर है 9033647244. Stay tuned and stay hot.

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Hey there, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में. This is the last hour of Mirchi Mornings and here we go with the updates from around the world.
2: Mirchi Hour Got 3.
1: सबसे पहले अर्जेंटाइन प्रेसिडेंट हावियर मिले न्यूयॉर्क में एक जूइश इंस्टीट्यूशन गए जहां पर उन्हें लवर ऑफ इजराइल अवार्ड दिया गया है. यूएन जनरल असेंबली के लिए न्यूयॉर्क आए मिले ने स्टूडेंट्स से बात भी की और निकलते वक्त उनके साथ डांस भी किया. नंबर 2 पर IIT बॉम्बे की एक हार्ट ब्रेकिंग स्टोरी है. 20-year-old स्टूडेंट साहिल वाकोड़े की डेथ की पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल रही है. रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड से लास्ट कॉल में कहा था, आई हैव मेड अ मिस्टेक. अथॉरिटीज अब उनके फाइनल आवर्स और सर्कमस्टांसेस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं. मामला चीटिंग और चीटिंग में पकड़े जाने को लेकर कहा जा रहा है. एंड आई विल कीप यू पोस्टेड एज एंड व्हेन थिंग्स अनफोल्ड. एंड लास्टली यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की अपकमिंग मीटिंग से पहले चाइना के यूएस एम्बेसडर शाई फंग ने ताइवान, ह्यूमन राइट्स और अदर इश्यूज को बीजिंग की रेड लाइंस बताया है. बेसिकली समिट से पहले डिप्लोमेटिक टेम्परेचर चेक हो रहा है एंड ये कॉन्वर्सेशन इज definitely the one the world is watching. And that was your Mirchi Hour Got 3. Main hoon Priscilla tumhare saath mein. Sunte raho mujhe aur follow karo mujhe Insta aur X par. Mera handle hai Mirchi Pris. WhatsApp ka number 9033647244. Stay tuned and stay hot.

0: Mirchi. Escabana, buscabana, sacabana. Rabana. Burga, burga. La fiesta la burga. Mirchi, burga.
1: हेलो
2: मिल गया मैडम, आप मयूर विहार में हमारे रक्षा पे बैठ के मयूर विहार फेज वन से फेज टू गई थी, याद है आपका?
1: नहीं, नंबर कहाँ से मिल गया?
2: वही आपको बता रहे हैं, आप जब उतर के गई है ना अपने घर, और घर के जो आपके पड़ोसी हैं, हम उनसे नंबर आपका लिए हैं, मोबाइल नंबर जो आप बोले हैं दाएं को मुड़ने के लिए, जब दाएं मुड़े हैं ना हम, मैडम आपका वो रास्ते में फोन भी आया था, जब आपका फुनवा बजा है तो आपकी आवाज सुने हैं हम, और बहुत अच्छा लगा है आवाज सुन के। आज जब रिक्शा पे बैठी है ना, मैं हम कसम खा रहे हैं, हम जब से आप बैठे हो उस सीट को हम छूने भी नहीं दिए, हम धोलाए भी नहीं है।
1: क्या तुझे पागल लग
2: नहीं वो मैडम, हम आपसे एक बात कहना चाह रहे थे।
1: क्या कहना है
2: मैडम? आई लव यू। हम आपको देख के इतना
3: मेरी बात है, चारू चारू फोन मत रखना, चारू फोन मत रखना, चारू फोन मत रखना, चारू चारू चलो। हेलो हेलो हेलो हेलो चारू, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मुझे किसी ने तुम्हारा नंबर दिया था, उसने मुझे बताया कि तुमने रिक्शा पे ट्रैवल किया था, रिक्शा पे बैठ के गई थी, मैंने तो मजाक किया, तुम्हारा मुर्गा बना दिया। आई लव यू बट मैं सभी से मोहब्बत करता हूँ यार, आई लव यू, मैं रिक्शा नहीं चलाता हूँ। चारू प्लीज बुरा मत मान यार, थोड़ा सा नहीं, रिक्शा मैं चलाने को तैयार हूँ यार तुम्हारी वजह से, लेकिन तुम प्लीज जरा थोड़ा सा गुस्सा कम कर दो, मेरे साथ प्यार से हंस के बोल दो।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: Hey there, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में। Are you excited for your राशि जोन पार्ट वन, यानी कि पहली छह राशियां, only on मिर्ची मॉर्निंग।
2: मिर्ची राशि जोन।
1: लेडीज यानी मेष राशि, आज पेशेंस का टेस्ट हो सकता है, थोड़ा सा पॉज लो, थोड़ा सेल्फ कंट्रोल और कन्फ्रंटेशन को सीन करके मूव ऑन करो। लकी कलर फॉर यू इज टील, लकी नंबर इज 7। टॉरस यानी कि वृषभ राशि, टाइम और मनी को लेकर प्रोटेक्टिव फील करेंगे एंड राइटली सो। बाउंड्रीज रखो एंड जेन्युइन एडवाइस को भी कम्प्लीटली ब्लॉक मत करो। लकी कलर फॉर यू इज पर्पल, लकी नंबर इज 4। जेमिनी यानी मिथुन राशि, आइडियाज का ट्रैफिक जाम लगा हुआ है दिमाग में, जो ब्रिलियंट थॉट दिमाग में आ रहे हैं राइट देम डाउन, क्लैरिटी वहीं से मिलने वाली है। लकी कलर इज कोरल, लकी नंबर इज 11। कैंसर यानी कर्क राशि, आज रिलेशनशिप्स में वर्ड से ज्यादा वो अनसेड चीजें मैटर करेंगी, लिसन केयरफुली। कभी कभी साइलेंस जो है वो एक फुल पैराग्राफ कहकर जाता है। लकी कलर फॉर यू इज येलो एंड लकी नंबर इज 2। लियो यानी कि सिंह राशि, पार्टनर के साथ छोटा डिसएग्रीमेंट हो सकता है बट ओवरऑल फाइनेंसेस और हेल्थ का जोन रीअश्योरिंग है, सो डिबेट को टेड टॉक बनाने की जरूरत नहीं है। लकी कलर इज मास्टर्ड कलर, लकी नंबर इज 19। वर्गो यानी कन्या राशि, म्यूचुअल एफर्ट को लेकर क्लैरिटी मिलेगी, आज कोऑपरेशन और ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशंस रिलेशनशिप्स और वर्क दोनों में काम आ सकते हैं। लकी कलर फॉर यू इज फॉरेस्ट ग्रीन, लकी नंबर इज 6। एंड दैट वॉज राशि जोन में पहली छह राशियां, बची छह राशियों को लेकर आऊंगी मैं थोड़ी सी देर में, तब तक तुम जाकर मुझे फॉलो करो, मिर्ची प्रेस इज माई हैंडल नेम इंस्टा और एक्स पर, एंड व्हाट्सएप कर सकते हो 9033 मिर्ची पर, दैट्स 9033647244। अभी लगाती हूँ मैं तुम्हारे लिए कुछ झमाझम मिर्चीदार बैंगर्स, तब तक के लिए यू स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: अगर तुम्हें यूनिवर्स की डायरेक्ट हिंट समझ नहीं आती है तो अब ये सुनने का टाइम आ चुका है। मैं वो प्रिसिला तुम्हारे साथ में, दिस इज मिर्ची मॉर्निंग।
2: मिर्ची राशि जोन।
1: लीब्रा यानी कि तुला राशि, सन तुम्हारे साइन में सेटल हो रहा है और सोशल वाइब्स जो है दे आर लुकिंग गुड, पीपल सीम मोर कोऑपरेटिव, सो गेट आउट मिंगल, लेकिन वॉलेट को भी थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग दो यार। लकी कलर इज स्काई ब्लू, लकी नंबर इज 8। स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, होम एंड फैमिली टेक सेंटर स्टेज, फेमिलियर सराउंडिंग्स में रिलैक्स करो एंड आज कोई मेजर फाइनेंशियल जंप लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। लकी कलर फॉर यू इज लाइलैक, लकी नंबर इज 13। सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि, आज सोशल बैटरी 100% चार्ज है, टॉक कनेक्ट मिंगल एंड मेजर कमिटमेंट्स और फाइनेंशियल डिसीजंस जो है उनको थोड़ा सा होल्ड पर रखो। लकी कलर इज टर्कोइज, लकी नंबर इज 21। कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि, लग रहा है कि तुम सब कुछ अपने शोल्डर्स पर कैरी कर रहे हो, थोड़ा सा हेल्प मांगना वीकनेस नहीं है बॉस, ट्रस्टेड पीपल को टीम में लाओ और टीम के साथ खेलो। लकी कलर फॉर यू इज ब्लैक, लकी नंबर इज 10। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि, चेंज की हवा तुम्हारे फेवर में चल रही है, इंट्यूशन में इंटरेस्टिंग आइडियाज आ सकते हैं, अब उनको बस प्रैक्टिकल प्लान में कन्वर्ट करना है। लकी कलर फॉर यू इज इलेक्ट्रिक ब्लू, लकी नंबर इज 16। पाइसीज यानी कि मीन राशि, ग्रे क्लाउड्स स्लोली मूविंग आउट, व्हाट कुड गो रॉन्ग से फोकस हटाओ एंड व्हाट कुड गो राइट पर ध्यान दो, आज पॉसिबिलिटीज को थोड़ा सा स्पॉटलाइट में लेकर आओ। लकी कलर फॉर यू इज पीच, लकी नंबर इज 3। और ये था तुम्हारा राशि जोन, फाइनली एंडेड पार्ट 1 एंड पार्ट 2। मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में, फॉलो करो मुझे इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033647244। अभी चला दे तुम्हारे लिए मिर्चीदार बैंगर्स, यू स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: अरे भाई क्यों मार रहे हो इसे?
1: अबे भाई मैंने इससे पूछा क्रिकेट का गोल्ड कौन है,
0: इसे ये नहीं पता।
1: कौन है बता?
0: कोहली।
1: अरे तू भी आस। इधर हमारी विमेन्स क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को हरा के एशियन गेम्स में गोल्ड जीता है और तुम दोनों को गोल्ड नहीं पता। तुम दोनों गग गोल्ड हो।
2: वो क्या होता है?
1: गैर गुजरे ऑफ ऑल टाइम
3: इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम। कंग्रेचुलेशंस।
4: इट्स हॉट।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: ओके जी, शो खत्म हो रहा है, बट जाने से पहले मिलान से एक फैशन धमाका लेकर जाना तो बनता है। एंड दिस वन्स गिविंग बॉलीवुड मीट्स हॉलीवुड वाइब्स मिलान फैशन वीक में। मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में, दिस इज मिर्ची मॉर्निंग्स। एंड वोग वर्ल्ड 2026 ने मिलान को लिटरली एक जायंट रनवे बना दिया है। एंड द सेलिब्रिटी गेस्ट लिस्ट इज ऑसम। जीजी हडीड, कार्डी बी, जे बाल्विन, जेनिफर लोपेज एंड आड्रिया आर्होना, मतलब की फैशन शो था या दुनिया का मोस्ट ग्लैमरस व्हाट्सएप ग्रुप, किसे पता। लेकिन हमारा देसी मोमेंट भी था, रश्मिका मंदाना मेकिंग हर वोग वर्ल्ड डेब्यू इन अ स्टनिंग sculptured black look by Indian designer Anamika Khanna. And get this, the gown reportedly took around 350 hours to create. So basically, हम लोग जो है आउटफिट डिसाइड करते करते 350 मिनट्स लगा देते हैं, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, है ना? The show took over Milan's iconic Galleria Vittorio Emanuele II, celebrating Italian craftsmanship, fashion history and innovation. और मुझे तो कसम से यार फैशन में बहुत इंटरेस्ट है, तो अगर मेरी तरह तुम हो तो मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। मिर्ची प्रेस इज माई हैंडल नेम, दैट इज MIRCHIPRIS। कुछ गॉसिप वर्दी बातें हम भी कर लेंगे। 9033 मिर्ची इज माई व्हाट्सएप नंबर, दैट्स 9033647224। और इसी ग्लैमरस नोट के साथ अभी के लिए साइन ऑफ कर रही हूँ मैं, बोलो तो प्रिसिला। कल आई विल hang out with you again, same time, same place, but tab tak ke liye you stay tuned and stay hot, you know she like-

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट।
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

मुझे लगता है हर किसी के अंदर एक बावर्ची होता है। पुरानी जीन्स पर हाय, मैं हूँ श्रेया। और सबने ना कभी कुछ ना कुछ तो कुक किया होता है, फिर चाहे वो हॉस्टल में तुम्हारे 2 मिनट नूडल्स हो या फिर चाय। तो हम सब कहीं ना कहीं तो बावर्ची होते ही हैं। इसी टाइटल को रखकर ऋषिकेश दा ने उस जमाने की एक बड़ी ही खूबसूरत फिल्म बनाई विद राजेश खन्ना।

ये खट्टी मीठी किस्से एक्चुअली में ड्यूरिंग द मेकिंग ऑफ दिस फिल्म हुए थे। शुरुआत करेंगे फिल्म की कास्ट और क्रेडिट से। वापस आओ श्रेया के साथ ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: मिर्ची
2: इसका बना उसका बना
3: हेलो
4: हेलो मुकेश जी
3: कौन
4: मुकेश जी मैं ये प्रताप बोल रहा हूँ राणा मोटर से। आपने जो 1000 दी थी ना उसका वो जो कार्बोरेटर साफ होना था वो सर हो नहीं पाया एक्चुअली थोड़ा
3: नहीं हो पाया भाई।
4: हाँ वो नहीं हो पाया सर।
3: नहीं हो पाया
4: सर वो थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। अच्छा सर आप बता रहे थे ना पीछे बोनेट से आवाज आ रही है आपकी गाड़ी की। सर वो भी हो नहीं पाई है वो उसमें थोड़ा हो नहीं पाया हमसे अभी।
3: नहीं क्या नहीं पाया तुम्हारे यार रोज गए तुम्हें जब भी गाड़ी तो नहीं हो पाया वो नहीं हो पाया क्या मजाक ही क्या है ये।
4: नहीं मुकेश जी मैं समझ रहा हूँ वो एक
3: क्या समझ रहे हो भाई।
4: नहीं नहीं आप सही कह रहे हैं। अच्छा मुकेश जी आपने एक बताया था ना ब्रेक ऑयल डलना है ब्रेक काम नहीं कर रहे। सर वो ऑयल डल नहीं पाया थोड़ा।
3: अरे तो हो क्या पाया है तुमसे
4: सर वो
3: ये नहीं हो पाया वो नहीं हो पाया मुझे फोन करना है मुझे फोन इसलिए कराया कि ये नहीं हो पाया वो नहीं हो पाया।
4: नहीं सर
3: आपको तो फोन इसलिए करना था कि भाई ये जो काम दिया गया आपको वो कर दे।
4: नहीं सर कुछ हो नहीं पाया।
3: क्यों नहीं हो पाया
4: सर वो रात गाड़ी चोरी हो गई आपकी
3: है।
4: सर रात गाड़ी चोरी हो गई आपकी।
3: अरे तेरा दिमाग खराब है क्या।
4: अरे सर मैं वही आपसे कह रहा हूँ मतलब हम
3: क्या करा दूँ
4: सर मतलब आप ये आप आके FIR लिखवा देंगे अपनी गाड़ी की।
3: कैसी FIR दिमाग खराब हो गया तेरा पागल तो नहीं है तू।
4: अरे सर जितने की गाड़ी थी इतना दे देंगे आप गुस्सा तो मत करिए कम से कम।
3: मैं गुस्सा ना करूं नई गाड़ी थी हमारी।
4: नहीं सर आप आपकी नई गाड़ी थी तो सर हमारा भी तो उसमें कुछ गया है हमने भी तो ग्रीस व्रीस लगाया उसमें ग्रीस लगाया उसमें हमने पेट्रोल डाला है
3: ग्रीस कितने का 5 रुपए का लगा आग लगा दूंगा मैं तुम्हारे शोरूम में तुम्हारे वर्कशॉप में।
4: अच्छा सर
3: मुझे चाहिए अपनी वापस।
4: सर आप इतना गुस्सा ना करें
3: जिम्मेदारी तुम्हारी है FIR वगैरह कराने की।
4: सर बिल्कुल आप गुस्सा ना करें। अच्छा सर ऐसा चल सकता है जैसे आप गाड़ी ना लेके कॉम्पोजिट कर दें हम आज शाम आपको मुर्गा खिला दें और मुकेश वो बन भी गया मुर्गा।
5: मुकेश मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ छोटा सा मजाक किया तुम्हारे साथ मुर्गा बना दिया तुम्हारा।
3: तो जान निकाल दी हमारी।
5: मुकेश आपकी गाड़ी वही खड़ी है आपकी वर्कशॉप में बस उसको धक्का लगाना है और आपको धक्का हम लगा देंगे। मेरे साथ जरा प्यार से कह दीजिए गुस्सा खत्म करिए।
3: कुकड़ू कू
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट इट्स हॉट। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

इससे पहले तक किसी भी फिल्म में ऐसा नहीं हुआ था। पुरानी जीन्स पर हाय, मैं हूँ श्रेया और आज ना ऋषिकेश दा, राजेश खन्ना, जया भादुड़ी जी की फिल्म बावर्ची की बात हो रही है। आपको पता है इससे पहले किसी भी इंडियन फिल्म में ऐसा नहीं हुआ था कि कास्ट और क्रेडिट को ना दिखाया जाए। हर फिल्म में जैसे क्रेडिट दिए जाते हैं ना, ये फिल्म पहली ऐसी फिल्म थी जिसमें क्रेडिट्स फिल्म के शुरुआत में नहीं दिए गए। फिर क्या किया गया, अगर आपने ये फिल्म देखी है तो पता होगा, और अगर नहीं देखी है या फिर बहुत पहले देखी थी तो मैं याद दिलाऊंगी। कम राइट बैक विद मी श्रेया, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।
1: ना चुस्कियों में, ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला। ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची पर आने वाला है हिट गाना।

Leon, Radio Mercy, New York. It's hot. आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

ये यूनिक आइडिया फिल्म के डायरेक्टर ऋषिकेश दा का था। पुरानी जींस पर हाय, मैं हूँ श्रेया एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द लेजेंडरी फिल्म बावर्ची, जो कि ऋषिकेश मुखर्जी ने बनाई थी। राजेश खन्ना थे, जया बच्चन थी और भी बहुत सारे एक्टर्स थे। अब इस फिल्म में पहली बार ऐसा हुआ कि क्रेडिट्स नहीं दिए गए, यानी देयर वर नो टाइटल कार्ड्स। तो फिर क्या किया गया था, इसमें अमिताभ बच्चन जी के वॉइस ओवर ने हर एक कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया था और ये यूनिक आइडिया पहली बार किसी फिल्म में देखा गया था। अच्छा, अमिताभ बच्चन उस टाइम पे बहुत बिजी थे, लेकिन अपने बिजी स्केड्यूल में से क्यों उन्होंने टाइम निकाला, ये अभी बताऊंगी श्रेया के साथ। वापस आओ ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: अरे भाई क्यों मार रहे हो इसे?
2: अबे भाई मैंने इससे पूछा क्रिकेट का गोल्ड कौन है,
1: इसे ये नहीं पता।
2: कौन है बता?
1: कोहली।
2: तू भी आस। इधर हमारी विमेंस क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को हरा के एशियन गेम्स में गोल्ड जीता है और तुम दोनों को गोल्ड नहीं पता।
1: भाई भाई भाई।
2: तुम दोनों गग गोल्ड हो।
1: ए? वो क्या होता है?
2: गैर गुजरे ऑफ ऑल टाइम
1: इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम। कंग्रेचुलेशंस।
3: इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

टाइटल्स के साथ एक्सपेरिमेंट ये पहले कभी किसी ने नहीं सोचा था। इट वॉज द फिनोमिनल ऋषिकेश मुखर्जी जिन्होंने ये सोचा भी और अपनी फिल्म बावर्ची में किया भी। पुरानी जीन्स पर हाय, मेरा नाम है श्रेया और मैं बात कर रही थी द लेजेंडरी फिल्म बावर्ची की, ऋषिकेश दा की डायरेक्टेड, जिसमें बावर्ची बने थे राजेश खन्ना, उनकी लव इंटरेस्ट बनी थी जया बच्चन जी। और इस फिल्म में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि कास्ट एंड क्रू के नाम नहीं दिए गए थे, बल्कि एक बहुत यूनिक आइडिया सोचा ऋषिकेश दा ने, एंड दैट वाज कि हर एक कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करने के लिए अमिताभ बच्चन का वॉइस ओवर यूज किया गया। अब अमिताभ बच्चन उस टाइम पे बहुत बिजी थे, तो ऋषिकेश दा उनसे ये फेवर मांगने में थोड़ा कतरा रहे थे। उन्होंने जया जी से वाइल्ड शूटिंग द फिल्म ऐसे ही मुस्कुरा के बात बात में कह दिया कि काश अमित ये काम कर पाता। ये बात जया जी ने घर जा करके अमित जी को डिनर पे बताई। अमिताभ बच्चन और जया जी के लिए ऋषिकेश दा फादरली फिगर थे, हमेशा से एक बड़े भाई थे। जैसे ही अमित जी ने ये बात सुनी, वो ऋषिकेश दा के घर पहुंच गए और उनसे नाराज होके कहा, दादा ये बात आप मुझसे आके नहीं कह सकते थे, आपको जया की जरूरत पड़ी इसके लिए। ऋषिकेश दा ने मुस्कुरा दिया और उसके बाद तो वी ऑल नो व्हाट हैपेंड। पुरानी जीन्स पर ऐसे बहुत सारे किस्से हैं मेरे पास, तो बस वापस आओ श्रेया के साथ।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट।
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

इस फिल्म की शूटिंग के दौरान ना ये दोनों डेटिंग फेज में थे। पुरानी जीन्स पर उस जमाने के गाने, उस जमाने की बातें, इस जमाने की श्रेया के साथ। अच्छा, तो मैं बात कर रही थी बावर्ची की थोड़ी देर पहले। तो इस फिल्म के दौरान अमिताभ बच्चन और जया जी ना एक दूसरे से मिलजुल रहे थे, एक दूसरे को समझ रहे थे, वो प्यार में धीरे धीरे पड़ रहे थे। तो क्या होता था कि अमित जी जया जी को मिलने फिल्म के सेट पे जाते थे। अब सेट पे तो उनको उस टाइम के सुपरस्टार काका यानी राजेश खन्ना भी मिलते थे, जिन्हें अमिताभ बच्चन थोड़े अखरते थे। अच्छा, काका उस टाइम पे अपने स्टारडम के खुमार में भी थे। अमिताभ बच्चन बिजी जरूर थे, उनके पास फिल्में

फिर उनकी तब की गर्लफ्रेंड जया जी को बताऊंगी थोड़े से गानों के बाद। मुझे बहुत मजा आता है आपको ऐसे सस्पेंस में छोड़ के जाने में, क्योंकि फिर मुझे यकीन होता है कि आप वापस यहाँ होंगे। सो कम राइट बैक पुरानी जींस पर, मैं हूँ श्रेया।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची
2: इसका बना उसका बना सबका बना मुर्गा मुर्गा नवीन वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो,
4: दिमाग खराब कर रखा है। रॉयल स्टूडियो से बोल रहे हैं भाई?
3: हाँ जी।
4: यार कमाल कर दिया आपने, जो फोटो खींचे थे मेरे बेटे की शादी के, सारी एल्बम आ गई है। क्या फोटो खींचे यार, दिमाग खराब कर दिया।
3: क्यों सर जी, क्या हो गया फोटो में?
4: अरे फोटो आके देख यार, यहाँ पे क्या एल्बम बना रखी है, सबके फोटो अजीब से आए यार, सारे फोटो यार बकवास कर दिया आपने, मेरा दिमाग खराब।
3: फोटो बहुत अच्छा है। क्या
4: फोटो बहुत अच्छा है? सतीश चंद का एक बटन है, उसकी शादी के फोटो बिखा दिए यार, सारे दिमाग।
3: सतीश जी बहुत अच्छे फोटो बहुत।
4: अरे मैं झूठ बोल रहा हूँ, मतलब मैं पागल हूँ? आपने एल्बम देखी है? एल्बम देखी है?
3: मैंने देखी खुद अपने हाथ। सर जी हमने फिश लाइन्स लगाया उसके ऊपर, बेहतरीन। आप देखिए कि एक से बेहतरीन क्लोजअप है उसके अंदर।
4: अरे क्लोजअप को मारा गोली यार, क्लोजअप तो देखे में शर्म आ रही है हमें।
3: अरे शर्म की क्या बात है सर,
4: जितने फोटो हैं सबके कपड़े गायब है यार, तूने किया क्या ये?
3: किसी का
4: कपड़े गायब है, एक आदमी का मैं खड़ा हूँ, अजीब सा लग रहा हूँ यार। मैं
3: लेंस कौन सा लगाया? नहीं
4: क्या, कौन सा लेंस लगाया? एक तो बता, ये बदमाशी करते हो, कपड़े
3: गायब? नहीं
4: मैं कल को
3: फोटो खींचे।
4: अरे लेंस ऐसे
3: पूरे
4: कपड़े कौन से? मैंने शेरवानी पहना की थी, शेरवानी गायब है, अंदर से सब दिख रहा है यार। शेरवानी तुमने गायब करी है यार मेरी?
3: सर शेरवानी गायब नहीं है, बहुत अच्छे फोटो है।
4: अरे मैं केस कर सकता हूँ वहाँ पे?
3: नहीं साहब देखिए, केस वेस की बात मत कीजिए, इसने हमारा नाम है इलाके में।
4: अरे हमारा भी कुछ था, अब कुछ नहीं बचा जब से फोटो देखे हैं।
3: सर क्या बात, चुन के बनाया है?
4: कोई फोटो चुन के नहीं बनाया, मेरा बेटा खड़ा है, कपड़े नहीं है बहू उसका, चलो छोड़ो मैंने देखा भी नहीं है, वो खड़ा है, जितने बराती आया है सबके कपड़े गायब है, ऐसा लग रहा है यार पता नहीं अफ्रीका में शादी हो रही है यार।
3: अरे नहीं सर कहीं गड़बड़ लग रही है मुझे,
4: गड़बड़
3: देखना चाहूंगा एक बार फिर आपकी एल्बम, ऐसी कोई बात नहीं
4: यार, इतना बुरा लग रहा है, हर आदमी के प्लेट में, हर आदमी के हाथ में प्लेट है, कपड़े है भी।
3: दिखाइए
4: आपका कपड़े कैसे, आप उसको सही करिए यार,
3: कोई सिस्टम ही नहीं है कपड़े गायब हो जाए।
4: ऐसा सिस्टम है, एक जगह होता है।
3: कहाँ होता है बताइए?
5: रेडियो मिर्ची 98.3 FM पर आप मुर्गा बन रहे हैं रेडियो मिर्ची।
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

काका बोले तो राजेश खन्ना अमिताभ बच्चन जी को बहुत सारे ताने मारते थे। पुरानी जीन्स पर हाय, मैं हूँ श्रेया और आज बात हो रही है ऋषिकेश दास द्वारा डायरेक्टेड फिल्म बावर्ची की। तो मैं कहाँ पे छोड़ के गई थी बात? हाँ, मैं ये बता रही थी कि ये वो टाइम था जब अमिताभ बच्चन एंड जया जी वर डेटिंग। वो एक दूसरे को मिल रहे थे, जान रहे थे, समझ रहे थे, धीरे धीरे प्यार में पड़ रहे थे। तो अमित जी के पास बड़ी सारी फिल्में थी, वो बिजी भी थे, लेकिन उनकी फिल्में इतनी चल नहीं रही थी। ऐसे में द सुपर सक्सेसफुल राजेश खन्ना जब उनको सेट पे देखते तो ऑफकोर्स उन्हें वो कॉम्पिटिशन लगते और वो उनको बहुत सारे ताने मारते। अमिताभ बच्चन भी सुन लेते, जया बच्चन भी सुन लेती। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब काका ने एक बहुत ही खराब शब्द कहा। इस शब्द को सुन करके जया जी का सब्र का बांध टूट पड़ा और उन्होंने काका को जाकर के उनके कान में एक ऐसी बात बोली जिसके बाद से उन्होंने कभी भी अमिताभ बच्चन को कुछ नहीं कहा। वो शब्द क्या था अभी बताऊंगी। श्रेया के साथ वापस आओ, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर,
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: only on Radio Mirchi, New York. It's hot.
1: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

0: मनहूस, ये कह के बुलाया था काका ने अमिताभ बच्चन जी को। पुरानी जीन्स पर हाय, मैं हूँ श्रेया और आज बात हो रही है बावर्ची फिल्म की। इस फिल्म को डायरेक्ट करने वाले ऋषिकेश दा, फिल्म के मेन लीड राजेश खन्ना और फिल्म की हीरोइन जया बच्चन। ये वो टाइम था जब जया बच्चन जया बहादुरी थी और अमिताभ बच्चन बहुत सारी फिल्में कर रहे थे लेकिन उनकी फिल्म सक्सेसफुल नहीं हो रही थी, वो फिल्में फ्लॉप होती जा रही थी एक के बाद एक। ये वो टाइम था जब जया जी और अमिताभ बच्चन प्यार करने लगे थे एक दूसरे से, तो अमित जी ना बावर्ची के सेट पे उनसे मिलने जाते थे और हाँ ऋषिकेश दा तो उनके दोस्त ही थे। ऐसे में राजेश खन्ना को बहुत अखड़ते थे। राजेश खन्ना चलते फिरते अमिताभ बच्चन को कोई ना कोई ताना मार ही देते थे। पर एक दिन ऐसा आया जब जया जी के सब्र का बांध टूट गया और वो था जब राजेश खन्ना ने अमिताभ बच्चन को कहा, मनहूस, तुम मनहूस हो, जिस भी फिल्म में जाते हो वो फ्लॉप हो जाती है। ये बात जया जी के दिल पे सीधे जाके चुभी। उनको इतना गुस्सा आया कि अमित जी उन्हें चाय पे वापस बैठाते रहे, बैठ जाओ, छोड़ो, जाने दो। जया जी गुस्से में उठी, राजेश खन्ना के पास गई और उनके कान में कहा, एक दिन पूरी दुनिया देखेगी कि ये आदमी क्या बनेगा और आप क्या रह जाएंगे। इस एक लाइन के बाद वो वापस आके चाय पीने लगी एंड आफ्टर दिस काका ने अमिताभ बच्चन को कभी ताना नहीं मारा। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ श्रेया और भी किस्से हैं उस जमाने के, तो गाने सुन करके यहीं वापस आना।
1: होठों पे रंगत है, दिल में मोहब्बत है, क्या जिसमें औरत है, बस जन्नत ही जन्नत है।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क इट्स हॉट
1: अरे भाई क्यों मार रहे हो इसे?
2: अबे भाई मैंने इससे पूछा क्रिकेट का गोल्ड कौन है,
1: इसे ये नहीं पता।
2: कौन है बता?
1: कोहली।
2: अरे तू भी आस। इधर हमारी विमेन्स क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को हरा के एशियन गेम्स में गोल्ड जीता है और तुम दोनों को गोल्ड नहीं पता। तुम दोनों गग गोल्ड हो।
3: वो क्या होता है?
2: गैर गुजरे ऑफ ऑल टाइम
3: इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम। कंग्रेचुलेशंस।
0: इट्स हॉट।

अच्छा एक और चीज में ये फिल्म बावर्ची खास थी। पुरानी जीन्स पर हाय, मेरा नाम है श्रेया और आज मूवी बावर्ची की बात कर रहे हैं। राजेश खन्ना, जया बच्चन एंड ऑफ कोर्स डायरेक्टेड बाय ऋषिकेश मुखर्जी। राजेश खन्ना यानी काका उस टाइम पे ना सुपरस्टार थे, बल्कि कहा जाता है कि इंडिया के वो फर्स्ट सुपरस्टार थे। उनके साथ हर हीरोइन ने कई सारी फिल्मों में काम किया था, फिर चाहे वो शर्मिला टैगोर हो, मुमताज जी हो, आशा पारेख हो, जीना तमान हो, तनुजा जी हो, ऑल ऑफ देम। लेकिन सिर्फ एक हीरोइन थी जो उस टाइम पे अपने स्टारडम के पीक पे थी, पर काका से थोड़ी दूरी बना के चलती थी। उन्होंने राजेश खन्ना के ऑपोजिट एज इज लव इंटरेस्ट सिर्फ एक ही फिल्म में काम किया और वो थी बावर्ची। जया जी और राजेश खन्ना की ये रोमांटिकली पेयर अप होने वाली पहली और आखिरी फिल्म थी, इसीलिए है ना ये यूनिक फिल्म, क्योंकि ऋषिकेश दा इन दोनों को एक साथ ले आए थे इस पिक्चर में। पुरानी जीन्स पर मेरा नाम है श्रेया, वापस आओ, बातें तो अभी बहुत सारी बाकी हैं उस जमाने की।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
2: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

एक ऐसी फिल्म जिसने हमें जम करके हंसाया और बहुत सारे सीन्स में इमोशनल भी कर दिया, आज उसी की बात हो रही है, बावर्ची। पुरानी जीन्स पर मेरा नाम है श्रेया और मैं बात कर रही हूँ ऋषिकेश दा द्वारा डायरेक्टेड फिल्म बावर्ची की। अच्छा, जो रेट्रो फैंस हैं उन्होंने डेफिनेटली ये फिल्म देखी होगी, और जिन्होंने नहीं देखी उन्हें मैं बताना चाहती हूँ कि इस फिल्म में राजेश खन्ना बावर्ची बने थे, एक जॉइंट फैमिली के लिए खाना बनाया करते थे। पर अगर जब आप फिल्म देखोगे ना तो वो खाने से ज्यादा वो पूरी फैमिली का ख्याल रखते थे। सबके सीक्रेट्स भी इसी बावर्ची के पास होते हैं। जब ऋषिकेश दा ने ये अलग हट करके कैरेक्टर, एकदम अलग हट करके फिल्म काका को सुनाई ना, उन्हें बड़ा पसंद आया। सबसे ज्यादा एक्साइट उनको किया था बावर्ची की कॉस्ट्यूम, हाफ पैंट्स, एक शर्ट और सर पे टोपी। अब ये जो टोपी थी ना, इसकी बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। इस टोपी को दो वजहों से पहना था राजेश खन्ना ने, एंड वो दो रीजंस क्या थे? आहा, अब तो आप मुझे जान गए हो, ऐसे कहां बताती हूँ मैं आपको। ऐसे सस्पेंस में छोड़ के जाने में श्रेया को तो बड़ा मजा आता है, तो गाने सुनकर के जल्दी से वापस आओ, फिर बताती हूँ इस टोपी।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: मिर्ची
2: हेलो
3: मिल गया मैडम, आप मयूर विहार में हमारा रक्षा पे बैठ के मयूर विहार फेज वन से फेज टू गई थी, याद है आपको?
2: नहीं, नंबर कहाँ से मिल गया?
3: वही आपको बता रहे हैं, आप जब उतर के गई हैं ना अपने घर, और घर के जो आपके पड़ोसी हैं, हम उनसे नंबर आपका लिए हैं, मोबाइल नंबर जो आप बोले हैं दाए को मुड़ने के लिए, जब दाए मुड़े हैं ना हम, मैडम आपका रास्ते में फोन भी आया था, जब आपका फुनवा बजा है तो आपकी आवाज सुने हैं हम, बहुत अच्छा लगा है आवाज सुन के। आज जब रिक्शा पे बैठी है ना, मैं हम कसम खा रहे हैं, हम जब से आप बैठे हो उस सीट को हम कि छूने भी नहीं दिए, हम धोलाए भी नहीं है।
2: क्या तुझे पागल लगा?
3: नहीं, वो मैडम हम आपसे एक बात कहना चाह रहे थे।
2: क्या कहना है?
3: मैडम आई लव यू, हम आपको देख के इतना मेरी बात है, चारू चारू फोन मत रखना, चारू फोन मत रखना। चलो हेलो, चारू मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मुझे किसी ने तुम्हारा नंबर दिया था, उसने मुझे बताया कि तुमने रिक्शा पे ट्रैवल किया था, रिक्शा पे बैठ के गई थी, मैंने तो मजाक किया, तुम्हारा मुर्गा बना दिया। आई लव यू बट मैं सभी से मोहब्बत करता हूँ यार, आई लव यू, मैं रिक्शा नहीं चलाता चारू प्लीज बुरा मत माने यार, थोड़ा सा नहीं, रिक्शा मैं चलाने को तैयार हूँ यार तुम्हारी वजह से, लेकिन तुम प्लीज जरा थोड़ा सा गुस्सा कम कर दो, मेरे साथ प्यार से हंस के बोल दो।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

लोगों को लगा कि ये टोपी राजेश खन्ना ने फिल्म के कॉस्ट्यूम के चक्कर में पहनी है, लेकिन इसका रीजन तो कुछ और ही था। हाय, मैं हूँ श्रेया और आप सुन रहे हैं मुझे पुरानी जीन्स पे, और आज बात हो रही है द फिनोमिनल फिल्म बावर्ची की। अच्छा, ऋषिकेश दास जब ये रोल लेकर के पहुंचे राजेश खन्ना के पास, तो उन्हें लगा था कि शायद काका मना कर दें, क्योंकि तब काका इमोशनल रोल्स तो कर रहे थे, लेकिन उनको साथ में अच्छा दिखना बहुत पसंद था, गुड लुक्स। सो राजेश खन्ना अपने कपड़ों को लेकर के, अपने कॉस्ट्यूम्स को लेकर के बहुत पर्टिकुलर होते थे। जब उन्हें पता चला कि इस फिल्म में वो बावर्ची का रोल प्ले करेंगे और उन्हें एक बावर्ची जैसे कपड़े पहनने हैं, तो उन्होंने हामी भर दी। ऋषिकेश दा को बड़ा अचंभा हुआ। फिर राजेश खन्ना ने एक बात कही कि उनके सर से बावर्ची की टोपी, अगर आप देखो ना, एक पॉइंटेड सी टोपी पहने वो, जिसे उन्होंने एक सेकेंड के लिए भी फिल्म में नहीं उतारा। सो काका ने कहा कि इस पूरी फिल्म में वो ये टोपी पहने रहेंगे। तो ऋषिकेश दा ने आंखें छोटी करते हुए उनको शक की निगाहों से देखते हुए पूछा कि राजेश, तुम ये टोपी कॉस्ट्यूम के लिए पहनना चाहते हो या फिर कोई और रीजन है? काका ने मुस्कुरा के पता है क्या कहा? कि उनके बाल कम हो रहे हैं और टोपी की वजह से वो छिप जाएंगे। पुरानी जीन्स पर मेरा नाम है श्रेया, और भी बातें बताऊंगी ना, वापस तो आओ।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर,
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में। अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट,
1: ओनली ऑन रेडियो मिर्ची। इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

ऋषिकेश राणा बंगाली फिल्मों से बहुत इंस्पायर होते थे, बहुत इम्प्रेस होते थे और इसीलिए उनकी कई सारी फिल्में बंगाली फिल्म से ही इंस्पायर्ड थी। पुरानी जीन्स पर हाय, मैं हूँ श्रेया। बावर्ची की बात हो रही है, ऋषिकेश दा ने बनाई थी, राजेश खन्ना और जया बच्चन थी विद अ लॉट ऑफ अदर एक्टर्स। ए के हंगल थे, असरानी साहब थे, दुर्गा खोटे थी। हाँ, तो मैं ये बता रही थी कि बावर्ची भी एक बंगाली फिल्म से इंस्पायर्ड थी और इसका नाम था गोल्पो होलियो सोटी। ये फिल्म तपन सिन्हा ने बनाई थी। बनी तो ये 1966 में थी, लेकिन जब ये ऋषिकेश मुखर्जी ने देखी थी, उन्होंने तभी सोच लिया था कि वो ये फिल्म राजेश खन्ना के साथ हिंदी में बनाएंगे। पुरानी जीन्स पर आज इसी फिल्म की बातें चलती रहेंगी, तो श्रेया के साथ वापस आओ।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: अरे भाई क्यों मार रहे हो इसे?
2: अबे भाई मैंने इससे पूछा क्रिकेट का गोल्ड कौन है,
1: इसे ये नहीं पता।
2: कौन है बता?
1: कोहली।
2: तू भी
3: आस। इधर
2: हमारी विमेन्स क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को हरा के एशियन गेम्स में गोल्ड जीता है और तुम दोनों को गोल्ड नहीं पता। तुम दोनों गग गोल्ड हो।
4: वो क्या होता है?
2: गैर गुजरे ऑफ ऑल टाइम
3: इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम। कंग्रेचुलेशंस।
5: इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: जीन्स पर आप हो श्रेया के साथ। मेरा जाने का टाइम तो हो गया है, पर आपको पता है ना मैं अकेले नहीं जाती हूँ। इस समय एक गाना चूज करके मैं और आप मिल करके हाईवे तक घूम के आते हैं। तो चलो गाड़ी में जल्दी से बैठो। तो आज का मेरा हाईवे हिट पहली मुलाकात पे, एंड स्पेशली जब आप उनसे फर्स्ट टाइम मिलने वाले होते हो ना, तो वो जो एक्साइटमेंट होता है ना कि क्या बातें होंगी, वो मुझसे क्या कहेगा, मैं उससे क्या पूछूंगी, आगे कॉन्वर्सेशन कैसे बढ़ाएंगे, अच्छा हम कैसे लग रहे होंगे एक दूसरे को, ये सब सवाल होते हैं ना। तो आज उसी एक्साइटमेंट पे
1: आज उनसे पहली मुलाकात होगी।
0: यही गाना सुनते हुए चलते हैं। On that note, this is Shreya signing off. आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो फेसबुक और इंस्टा पे, RJ Shreya with love. ये है मेरा हैंडल, that's RJ SHREYA Shreya with love.

कहते हैं कि दिल से चाहो तो क्या कुछ नहीं हो सकता, मैं बिल्कुल मानता हूँ इस बात को, लेकिन ये एक चीज नहीं हो रही है। मैं फोन छोड़ने की कोशिश करता हूँ रात को सोने से एक घंटे पहले। आई हैव रेड इट समवेयर कि रात को सोने से एक घंटे पहले तक फोन नहीं चलाना चाहिए तो अच्छी नींद आती है, इट इज गुड फॉर बॉडी, बट इट इज नॉट हैपनिंग। मिर्ची सुन रहे हो आप, मेरा नाम क्रिश है और ये आई नो मेरे साथ साथ बहुत सारे और लोगों की भी प्रॉब्लम होगी, बट इन केस समहाउ इफ यू फाइंड अ सॉल्यूशन फॉर दिस देन डू लेट मी नो। इंस्टाग्राम पर हूँ मिर्ची क्रिश के नाम से, KRISH इज द स्पेलिंग ऑफ माई नेम। कम देयर, लेट्स टॉक अबाउट इट, बिकॉज ये एक चीज दिल से चाहने के बाद भी नहीं हो रही है। फिलहाल दिल से मैं जो जो चाहता हूँ उसके बारे में हम थोड़ी सी देर में बात करते हैं। गानों के उस पार आ रहा हूँ, ओनली ऑन मिर्ची, मेरा नाम क्रिश है, इट्स ऑल।

0: Mirchi. Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. La vieux bala burga. Mirchi burga.
1: हेलो,
2: दिमाग खराब कर रखा है। रॉयल स्टूडियो से बोल रहे हैं भाई?
1: हाँ जी
2: यार, कमाल कर दिया आपने। जो फोटो खींचे थे मेरे बेटे की शादी के, सारी एल्बम आ गई है। क्या फोटो खींचे यार, दिमाग खराब कर दिया।
1: क्यों सर जी, क्या हो गया फोटो में?
2: अरे फोटो आकर देख यार, यहाँ पे क्या एल्बम बना रखी है, सबके फोटो अजीब से आए यार। सारे फोटो यार बकवास कर दिया आपने, मेरा दिमाग खराब।
1: फोटो बहुत अच्छा है। क्या
2: फोटो बहुत अच्छा है? सतीश चंद का एक बटन है, उसकी शादी के फोटो बिखा दिए यार। सारे दिमाग
1: सतीश जी बहुत अच्छे फोटो बहुत।
2: अरे मैं झूठ बोल रहा हूँ, मतलब मैं पागल हूँ? आपने एल्बम देखी है? एल्बम देखी है?
1: मैंने देखी खुद अपने हाथ से। सर जी हमने फिश लाइन लगाया उसके ऊपर, बेहतरीन। आप देखिए एक से एक बेहतरीन क्लोजअप है उसके अंदर।
2: अरे क्लोजअप को मारा गोली यार, क्लोजअप तो देखे में शर्म आ रही है हमें।
1: अरे शर्म की क्या बात है सर,
2: जितने फोटो हैं सबके कपड़े गायब है यार। तूने किया क्या ये?
1: किसी का
2: कपड़े गायब है, एक आदमी का मैं खड़ा हूँ, अजीब सा लग रहा हूँ यार। मैं
1: लगाया नहीं।
2: क्या कौन सा लेंस लगाया? एक तो बता, ये बदमाशी करते हो, कपड़े गायब
1: नहीं।
2: मैं कल को
1: फोटो
2: खींचे। अरे लेंस ऐसे
1: पूरे कपड़े
2: कौन से? मैंने शेरवानी पहन रखी थी, शेरवानी गायब है, अंदर से सब दिख रहा है। शेरवानी तुमने गायब करी है यार मेरी।
1: नहीं सर, शेरवानी गायब नहीं है, बहुत अच्छे फोटो है।
2: अरे मैं केस कर सकता हूँ वहाँ पे?
1: नहीं साहब, देखिए केस वेस की बात मत कीजिए, इसलिए हमारा नाम है इलाके में।
2: अरे हमारा भी कुछ था, अब कुछ नहीं बचा जब से फोटो देखे।
1: सर क्या बात, चुन के बनाया है?
2: कोई फोटो चुन के नहीं बनाया, मेरा बेटा खड़ा है, कपड़े नहीं है बहू उसको, चलो छोड़ो, मैंने देखा भी नहीं है। वो खड़ा है, जितने बराती आया है सबके कपड़े गायब है। ऐसा लग रहा है यार, पता नहीं अफ्रीका में शादी हो रही है यार।
1: अरे नहीं सर, कहीं गड़बड़ लग रही है मुझे।
2: गड़बड़
1: देखना चाहूंगा एक बार फिर आपकी। हेलो, ऐसी कोई बात नहीं
2: यार, इतना बुरा लग रहा है। हर आदमी के प्लेट में, हर आदमी के हाथ में प्लेट है, कपड़े है भी।
1: दिखाइए
2: आपका कपड़े कैसे, आप उसको सही करिए यार।
1: कोई सिस्टम ही नहीं है, कपड़े गायब हो जाए।
2: ऐसा सिस्टम है, एक जगह होता है।
1: कहाँ होता है बताइए?
3: रेडियो मिर्ची 98.3 एफएम पर आप मुर्गा बन रहे हैं रेडियो मिर्ची।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
5: तेरा क्या होगा कालिया?
6: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
5: अब मिर्ची खा।
4: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

23 अक्टूबर को एक बिल्कुल नया फिनोमेना थिएटर्स में रिलीज होने वाला है। बिल्कुल नया ही है, इसका नाम सुनेंगे तो आपको भी लगेगा मिर्ची। सुन रहे हो आप, मेरा नाम क्रिश है। द फिनोमेना दैट आई एम टॉकिंग अबाउट इज कॉल्ड पहला प्यार दूसरी बार। दिस इज अ न्यू मूवी बाय अगेन लव रंजन, वही प्रोड्यूस कर रहे हैं इसको। ये वही हैं जिन्होंने प्यार का पंचनामा 2 और सोनू के टीटू की स्वीटी ये सारी मूवीज रिलीज करी थी। उसके बाद तू झूठी मैं मक्कार, इसके बाद अब प्यार का पंचनामा स्टाइल में ही ये 6 न्यू कमर्स को लेकर आए हैं। और अगर इसका ट्रेलर आप देखेंगे जो कि कल रिलीज हुआ है, इसका ट्रेलर देखने में भी आपको सेम वाइब आएगी कि सेम प्रोडक्ट की नई पैकेजिंग है एंड सेम काइंड ऑफ पंचेस, सेम काइंड ऑफ दोस्ती, सेम काइंड ऑफ प्यार। सो आप भी एक बार देखो और मुझे बताओ, दूसरी बार नहीं, पहली बार अगर देख लिया हो तो दूसरी बार नहीं, बैठी नहीं बात है ना, कोई बात नहीं। इस मूवी का नाम भी नहीं बैठा, पहला प्यार दूसरी बार, कोई नहीं। आप देख के बताना कि आपको ट्रेलर कैसा लगा। मिर्ची क्रिश के नाम से इंस्टाग्राम पर हूं, KRISH इज द स्पेलिंग ऑफ माय नेम। मुझे तो एग्जैक्टली सेम लगा, तो मुझे ये लगेगा कि मैं वही मूवीज को दोबारा देख रहा हूं। बाकी आप बताना। दिस इज मिर्ची, इट्स ऑल।

0: ना चुस्कियों में, ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: रिसेंटली ओटीटी पर एक सीरीज आई थी जिसका नाम है मुसाफिर कैफे, एंड मोस्ट ऑफ द पीपल लाइक्ड इट आल्सो। और अगर आप भी मोस्ट ऑफ द पीपल हो, देन कांग्रेचुलेशंस, आपके लिए एक अच्छी खबर है। मिर्ची सुन रहे हो आप, मेरा नाम क्रिश है। इनफैक्ट अगर आपको पहाड़ पसंद है तो आपके लिए डबल अच्छी खबर है। विक्रांत मैसी, जो कि इस सीरीज में लीड एक्टर थे, उन्होंने ये अनाउंस करा कुछ टाइम पहले कि वो खुद के मुसाफिर कैफेज खोल रहे हैं। यस, दिस इज ट्रू। ये कैफेज एक हिमाचल में होगा, एक उत्तराखंड में होगा, दोनों अंडर कंस्ट्रक्शन भी हैं ऑलरेडी। ये प्रोजेक्ट जो है वो उनके खुद की प्रोडक्शन कंपनी होममेड स्टोरी से टाइड अप है। ये कैफेज का जो लुक होगा वो रिक्रिएट करेगा एग्जैक्टली वही जो आपने सीरीज में देखा, रस्टिक सा, कोजी सा, एकदम फिक्शनल जैसे कैफे हमने देखा था। यहाँ पे हर लोकेशन में, यानी कि इन दोनों कैफेज में 20 रूम्स ईच होंगे, जहां पे आर्टिस्ट आए, रहें, जो भी उनका काम करना है करें। बेसिकली अगर आप वो स्लो वेकेशन पसंद करते हो ना, कि पहाड़ों में जाएं, कुछ दिन रह कर आए, वहीं से काम कर लेंगे, देन दिस इज द वन फॉर यू। एंड आई एम वेरी हैप्पी। ये तो आई थिंक सबसे पहले जो लोग एक्सप्लोर करेंगे उनमें से मैं भी होने वाला हूँ, बट आई वुड लव इट। इनफैक्ट यू शुड ऑल्सो गो। बाकी अब कुछ बढ़िया से गाने सुनते हैं ओनली ऑन मिर्ची। मेरा नाम क्रिश है, इट्स ऑल।

0: अरे भाई क्यों मार रहे हो इसे?
1: अबे भाई मैंने इससे पूछा क्रिकेट का गोल्ड कौन है,
0: इसे ये नहीं पता।
1: कौन है बता?
0: कोहली।
1: तू भी
2: आस। इधर
1: हमारी विमेंस क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को हरा के एशियन गेम्स में गोल्ड जीता है और तुम दोनों को गोल्ड नहीं पता। तुम दोनों गग गोल्ड हो।
3: वो क्या होता है?
1: गैर गुजरे ऑफ ऑल टाइम
4: इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम। कंग्रेचुलेशंस।
5: इट्स हॉट।
6: हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट।
7: ओनली ऑन रेडियो मिर्ची। इट्स हॉट।

0: यार ये दूसरी कैटेगरी वालों को क्या पढ़े लिखे गवार बोल सकते हैं?
1: ये वर्ल्ड है ना वर्ल्ड, इसमें दो तरह के लोग होते हैं।
0: मिर्ची पे ट्यून इन हूँ आप, मैं हूँ आपके साथ श्रुति, और आज डिस्कस कर रही हूँ पब्लिक स्पेस में अपना फोन यूज करने वाले लोगों को, जिसमें फर्स्ट आर द पीपल जो अगर किसी पब्लिक स्पेस में है तो सेंसिबली काम करेंगे। सबसे बेस्ट ऑप्शन इनका होता है कि भाई हेडफोन्स इनके हैंडी रहते हैं, किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। लेकिन जो दूसरी कैटेगरी है, ओ हो, बहुत ही गलत कीड़े ने बहुत ही गलत जगह काट रखा है इनको, क्योंकि ये पब्लिक स्पेस को भी ना अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी मान के चलते हैं। ये लिफ्ट में हो, किसी ऑफिस स्पेस में हो, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आजू बाजू कौन है, कोई डिस्टर्ब हो रहा है नहीं हो रहा है। इनको अगर वॉल्यूम का लेवल टॉप नॉच रख के ही कोई वीडियो देखनी है, फॉर दैट मैटर कॉल पे बात करना है, तो ये करेंगे। और ये वही लोग हैं जो थिएटर में अपना फोन रिंगर पे भी रखते हैं, और अगर कॉल आए तो उसको अटेंड भी करते हैं, वो भी थिएटर के अंदर ही। बेटा कसम से बता रही हूँ, किसी दिन गलत हत्थे चढ़े ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। बाकी तो बच्चे को गुब्बारा काफी और समझदार को इशारा काफी। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ, स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: Milci. Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. Na virtual la burga.
1: Milci, burga. हेलो
2: हेलो मुकेश जी.
1: कौन
2: मुकेश जी? मैं ये प्रताप बोल रहा हूँ, राणा मोटर से. आपने जो 1000 दी थी ना, उसका वो जो कार्बोरेटर साफ होना था, वो सर हो नहीं पाया. एक्चुअली थोड़ा
1: नहीं हो पाया भाई.
2: हाँ, वो नहीं हो पाया सर.
1: हाँ, नहीं हो पाया
2: सर, वो थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी. अच्छा सर, आप बता रहे थे ना पीछे बोनेट से आवाज आ रही है आपकी गाड़ी की. सर वो भी हो नहीं पाई है, वो उसमें थोड़ा हो नहीं पाया हमसे अभी.
1: नहीं, क्या नहीं पाया तुम्हारे यार, रोज गए तुम्हें, जब भी गाड़ी तो नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया, क्या मजाक ही क्या है ये?
2: नहीं मुकेश जी, मैं समझ रहा हूँ वो एक
1: क्या समझ रहे हो भाई.
2: नहीं नहीं, आप सही कह रहे हैं. अच्छा मुकेश जी, आपने एक बताया था ना ब्रेक ऑयल डलना है, ब्रेक काम नहीं कर रहे. सर वो ऑयल डल नहीं पाया थोड़ा.
1: अरे तो हो क्या पाया है तुमसे
2: सर? वो
1: ये नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया. मुझे फोन करना है, मुझे फोन इसलिए कराया कि ये नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया.
2: नहीं सर,
1: आपको तो फोन इसलिए करना था कि भाई ये जो काम दिया गया आपको वो कर दे.
2: नहीं सर, कुछ हो नहीं पाया.
1: क्यों नहीं हो पाया
2: सर? वो रात गाड़ी चोरी हो गई आपकी.
1: है
2: सर, रात गाड़ी चोरी हो गई आपकी.
1: अरे तेरा दिमाग खराब है क्या?
2: अरे सर मैं वही आपसे कह रहा हूँ, मतलब हम
1: क्या करा दूँ
2: सर? मतलब आप ये आप आके FIR लिखवा देंगे अपनी गाड़ी की?
1: कैसी FIR? दिमाग खराब हो गया तेरा, पागल तो नहीं है तू?
2: अरे सर जितने की गाड़ी थी इतना दे देंगे आप? गुस्सा तो मत करिए कम से कम.
1: गुस्सा ना करूँ, नई गाड़ी थी हमारी.
2: नहीं सर, आपकी नई गाड़ी थी तो सर हमारा भी तो उसमें कुछ गया है. हमने भी तो ग्रीस व्रीस लगाया,
1: उसमें
2: ग्रीस ग्रीस लगाया, उसमें हमने पेट्रोल डाला है.
1: ग्रीस कितने का? 5 रुपए का लगा. आग लगा दूंगा मैं तुम्हारे शोरूम में, तुम्हारे वर्कशॉप में.
2: अच्छा सर,
1: मुझे चाहिए अपनी वापस.
2: सर आप इतना गुस्सा ना करें,
1: जिम्मेदारी तुम्हारी है FIR वगैरह कराने की.
2: सर बिल्कुल आप गुस्सा ना करें. अच्छा सर, ऐसा चल सकता है जैसे आप गाड़ी ना लेके कॉम्पोजिट कर दें, हम आज शाम आपको मुर्गा खिला दें और मुकेश वो बन भी गया मुर्गा.
3: मुकेश मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, छोटा सा मजाक किया तुम्हारे साथ, मुर्गा बना दिया तुम्हारा.
1: तो जान निकाल दी हमारी.
3: मुकेश आपकी गाड़ी वही खड़ी है आपकी वर्कशॉप में, बस उसको धक्का लगाना है और आपको धक्का हम लगा देंगे. मेरे साथ जरा प्यार से कह दीजिए, गुस्सा खत्म करिए.
1: कुकड़ू कू
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट. ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची पर आने वाला है हिट गाना.
5: हिट, हिट, हिट, हिट गाना. हिट.

तो चलो आगे बढ़ते हैं। आज बेसिकली हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की बनाई हुई मिस्ट्री थ्रिलर्स के बारे में इन टुडेज पांच का पंच। मिर्ची सुन रहे हो आप, मेरा नाम क्रिश है। अभी तक इस लिस्ट में दो मूवीज के बारे में आपको बता चुका हूँ। नंबर पांच पर थी तलाश द आंसर लाइज विद इन और फोर्थ पर थी तलवार 2015 में आई इरफान खान मूवी। अब आते हैं नंबर थ्री पर, कहानी 2012 में आई ये मूवी स्टारिंग विद्या बालन डायरेक्टेड बाय सुजॉय घोष, जिसमें विद्या बालन प्लेड अ प्रेग्नेंट वुमन का रोल जो लंदन से कोलकाता अपने मिसिंग हस्बैंड को ढूंढने जाती है। सब जगह डेड एंड दिखता है, लेकिन एट द एंड क्या होता है? देखो वैसे तो ये मूवी काफी लोगों ने देखी हुई है, बट फॉर सम पीपल जिन्होंने नहीं देखी होगी आई ऑब्वियसली डोंट वांट टू स्पॉइल इट फॉर यू, सो गो एंड वॉच इट। फिर सेकंड पर आती है माय पर्सनल फेवरेट्स में से एक, अंधाधुन 2018 में आई ये मूवी स्टारिंग आयुष्मान खुराना, तबू एंड राधिका आप्टे डायरेक्टेड बाय श्रीराम राघवन। नाउ यू वांट टू मेक अ मास्टरपीस ऑफ अ मूवी, ब्रिंग सम ग्रेट एक्टर्स टुगेदर और फिर कमाल देखो। ये मूवी वही कमाल करती है। आयुष्मान खुराना का कैरेक्टर विजुअली इम्पेयर्ड पियानो प्लेयर है, बट ही कैन एक्चुअली सी, और फिर वो एक वेब ऑफ मर्डर में फंसते ही जाते हैं। अगेन इस मूवी को स्पेशल बनाती है इस मूवी की जबरदस्त कास्ट। सो इन केस बाय चांस वंस इन अ रेयर मोमेंट्स आपने नहीं देखी है तो जरूर देखो, मजा आएगा। बाकी नंबर वन पे कौन सी मूवी है ये गेस करो, मेरे इंस्टाग्राम पर जाकर मुझे बताओ। मिर्ची क्रिश के नाम से आई एम देयर, दिस इज मिर्ची।

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

आई थिंक मिस्ट्री थ्रिलर्स बॉलीवुड का वो जॉनरा है जो वो काफी अच्छे से एक्सप्लोर कर पाए। इसीलिए आज की पांच का पंच में वी आर टॉकिंग अबाउट बॉलीवुड के एपिक पांच ऐसी मूवीज जो मिस्ट्री थ्रिलर से भरी हुई हैं। एंड हमने अभी तक बात करी पांचवें नंबर पर तलाश दी आंसर लाइज विद इन के बारे में, फोर्थ पर आई तलवार, थर्ड पर कहानी, सेकंड पर अंधाधुन। अब नंबर वन बताने से पहले ऑफकोर्स मेरा एक स्पेशल मेंशन आएगा, ये वो मूवी है जो कि आज की डेट में कल्ट क्लासिक है, गुप्त द हिडन ट्रुथ 1997 में आई स्टारिंग बॉबी देओल उर्फ लॉर्ड बॉबी एंड काजोल, डायरेक्टेड बाय राजीव राय। साहिल यानी बॉबी देओल का कैरेक्टर अरेस्ट हो गया है फॉर मर्डरिंग हिज स्टेप फादर, बट ही हैज टू प्रूव दैट ही समहाउ इनोसेंट। आगे जो जो होता है और क्लाइमैक्स में जो रिवील होता है वो आई थिंक सबको पता है, बट दिस मूवी इज एज्ड लाइक अ फाइन वाइन बिकॉज अब ये टाइमलेस क्लासिक है, हेंस द स्पेशल मेंशन। एंड अब आते हैं नंबर वन पे जो कि मुझे पता था काफी लोग गेस कर लेंगे, ऑफकोर्स दृश्यम 2015 की ये मूवी स्टारिंग अजय देवगन, तब्बू एंड श्रिया सरन, डायरेक्टेड बाय निशिकांत कमत। वैसे तो ये 2013 की मलयालम मूवी दृश्यम का ही रीमेक है, लेकिन एक मूवी कितनी सक्सेसफुल है ये आपको तभी समझ में आ जाता है जब 11 साल बाद भी उसका थर्ड पार्ट आने वाला हो और उसका एक डायलॉग इतने साल बाद भी हम सबको याद हो। यस, हम सबको पता है कि 2 अक्टूबर को क्या हुआ था, हेंस दिस मूवी डिजर्व्स द फर्स्ट स्पॉट। अगर मैं कोई बहुत बढ़िया मिस्ट्री थ्रिलर मिस कर रहा हूं देन डू टेल मी अबाउट इट एंड वी कैन टॉक अबाउट इट ऑन एयर। मिर्ची क्रिश के नाम से आई एम ऑन इंस्टाग्राम, जाओ वहां पर बताओ, KRISH इज द स्पेलिंग ऑफ माई नेम, दिस इज मिर्ची, इट्स आर्ट।

0: इधर।
1: अरे भाई क्यों मार रहे हो इसे?
0: अबे भाई मैंने इससे पूछा क्रिकेट का गोल्ड कौन है,
1: इसे ये नहीं पता।
0: कौन है बता?
1: कोहली।
0: अरे तू भी आस। इधर हमारी विमेंस क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को हरा के एशियन गेम्स में गोल्ड जीता है और तुम दोनों को गोल्ड नहीं पता। तुम दोनों गग गोल्ड हो।
2: वो क्या होता है?
0: गैर गुजरे ऑफ ऑल टाइम
2: इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम। कंग्रेचुलेशंस।
3: इट्स हॉट।

ये कॉन्सेप्ट सही है यार। वीकेंड में एक बार सलमान खान आते हैं, कुछ भी बोल के चले जाते हैं, पूरे हफ्ते तक उसी बात को लेकर घर में हंगामा होता है। And of course, I am talking about Big Boss, भाई। मिर्ची सुन रहे हो आप, मेरा नाम क्रिश है। In case you are following it, तो आपको पता होगा recently जब सलमान खान आए थे तो he talked about काजी का behavior, because उन्होंने बीच में बोला था मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है, mental issues हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, he was just playing a game। तो उन्होंने हंसी मजाक में बात निकाल दी, लेकिन जैसे ही वो इंटरेक्शन खत्म हुई सलमान खान से, रिति तिवारी वर्सेस काजी हो गया और उन्होंने काफी डिसरिस्पेक्टफुली काजी से बात करी रिति ने। अब ठीक है, मैं मानता हूं काजी की गलती थी, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर हो गया था। हालांकि उसके बाद आपने रिसेंटली ये भी देखा होगा कि कैसे वो अपने लाइफ के स्ट्रगल्स बता रही हैं कि कैसे उन्हें घर से सिर्फ पॉकेट मनी के नाम पर 25,000 पर मंथ मिलते थे, ऐसे में कोई कैसे गुजारा करे। मैम, आपको पता है कि आप काफी सारे लोगों की सैलरी इतनी है या इससे भी कम है, पता है आपको? नहीं, कोई बात नहीं, होता होगा, जब कम सैलरी मिलती है तो कई बार ऐसा ही होता है। सैलरी तो हुई, ये पॉकेट मनी तो है नहीं, 25,000 जो आपको घर से मिल रहे थे सैलरी है, बट जिस तरीके से आपने बताया ना, आई जस्ट फील बैड अबाउट इट। तो अभी आप भी बताओ, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? ये जो बताना था भाई 25,000 मेरे को मिलते हैं, घर वालों ने इतनी हेल्प नहीं करी, वॉज इट राइट, जस्टिफाइड है कहीं ना कहीं से? इंस्टाग्राम पर हूं मिर्ची क्रिश के नाम से, KRISH इज द स्पेलिंग ऑफ माई नेम, कम लेट्स टॉक देयर, दिस इज मिर्ची, इट्स ऑल।

शाम शानदार लाइव सुन रहे आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और स्वागत है आपका वेंसडे की इस खूबसूरत शाम में। वैसे वेंसडे ना एक ऐसा दिन होता है जो यार ज़्यादा बोलता नहीं पर सब कुछ समझ जाता है। मतलब मंडे का ड्रामा भी ये देख चुका होता है, फ्राइडे के प्लान भी ये जान लेता है, बस बीच में बैठ कर ना हमारे सारे प्लान्स को जज कर रहा होता है कि अच्छा बड़े बड़े वादे

समझ जाओ वेंसडे अपना काम कर रहा है। आप भी बताओ दोस्तों, आज आप थोड़ी कंपोज थे या कंपोज रहने की सिर्फ एक्टिंग कर रहे थे? क्योंकि मुझसे पूछो तो यार मैं बहुत ही ज़्यादा कंपोज्ड नहीं थी, लेकिन जब कभी भी शाम को आपके लिए धमाकेदार गाना बजाने का मौका मिलता है तब यार ये पूरी कायनात सारा कंपोजर मेरे लिए लेकर आती है। तो चलिए वही करते हैं, आपके लिए बजाते हैं ये अगला धमाकेदार गाना, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: हेलो,
1: दिमाग खराब कर रखा है। रॉयल स्टूडियो से बोल रहे हैं भाई?
0: हाँ जी।
1: यार कमाल कर दिया आपने, जो फोटो खींचे थे मेरे बेटे की शादी के, सारी एल्बम आ गई है। क्या फोटो खींचे यार, दिमाग खराब कर दिया।
0: क्यों सर जी, क्या हो गया फोटो में?
1: अरे फोटो आकर देख यार, यहाँ पे क्या एल्बम बना रखी है, सबके फोटो अजीब से आए यार, सारे फोटो यार बकवास कर दिया आपने, मेरा दिमाग खराब।
0: फोटो बहुत अच्छा है। क्या
1: फोटो बहुत अच्छा है? सतीश चंद का एक बच्चा था, उसकी शादी के फोटो बका दिए यार, सारे दिमाग।
0: सतीश जी बहुत अच्छे फोटो बहुत।
1: अरे मैं झूठ बोल रहा हूँ, मतलब मैं पागल हूँ? आपने एल्बम देखी है? एल्बम देखी है? अरे क्लोजअप को मारा गोली यार, क्लोजअप तो देखे में शर्म आ रही है हमें।
0: अरे शर्म की क्या बात है सर,
1: जितने फोटो हैं सबके कपड़े गायब है यार, तूने किया क्या? ये
0: किसी का
1: कपड़े गायब है, एक आदमी का मैं खड़ा हूँ, अजीब सा लग रहा हूँ यार। मैं
0: लगाया नहीं
1: क्या, कौन सा लेंस लगाया? एक तो बता, ये बदमाशी करते हो, कपड़े गायब
0: नहीं।
1: कल को
0: फोटो खींचे?
1: अरे लेंस ऐसे पूरे कपड़े कौन से, मैंने शेरवानी पहन रखी थी, शेरवानी गायब है, अंदर से सब दिख रहा है यार। शेरवानी तुमने गायब करी है यार मेरी?
0: नहीं सर, शेरवानी गायब नहीं है, बहुत अच्छे फोटो है।
1: अरे मैं केस कर सकता हूँ वहाँ पे?
0: नहीं साहब, देखिए केस वेस की बात मत कीजिए, इसने हमारा नाम है इलाके में।
1: अरे हमारा भी कुछ था, अब कुछ नहीं बचा जब से फोटो देखे हैं।
0: सर क्या बात, चुन के बनाया है?
1: कोई फोटो चुन के नहीं बनाया, मेरा बेटा खड़ा है, कपड़े नहीं है बहू, उसका चलो छोड़ो, मैंने देखा भी नहीं है, वो खड़ा है, जितने बराती आया है सबके कपड़े गायब है, ऐसा लग रहा है यार, पता नहीं अफ्रीका में शादी हो रही है यार।
0: अरे नहीं सर, कहीं गड़बड़ लग रही है मुझे,
1: गड़बड़
0: देखना चाहूंगा एक बार फिर आपकी एल्बम, ऐसी कोई बात नहीं
1: यार, इतना बुरा लग रहा है, हर आदमी के प्लेट में, हर आदमी के हाथ में प्लेट है, कपड़े है भी।
0: दिखाइए
1: आपका कपड़े कैसे, आप उसको सही करिए यार,
0: कोई सिस्टम ही नहीं है कपड़े गायब हो जाए,
1: ऐसा सिस्टम है एक जगह होता है,
0: कहाँ होता है बताइए।
2: रेडियो मिर्ची 98.3 FM पर आप मुर्गा बन रहे हैं रेडियो मिर्ची।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स

एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शारदा लाइव सुन रहे हैं आप और मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि, और बातें हो रही है 2009 के एक ऐसे एल्बम की जिसका यार हर एक गाना सुपर डुपर हिट था। एल्बम था प्रीतम ने बनाया हुआ लव आजकल का, तो ये तो आपको याद होगा ही। लेकिन इसका जो ये खास गाना है जो सीधा साधा नहीं था, बिल्कुल था ट्विस्ट, पूरा मूड पार्टी मोड में स्विच कराने वाला एक गाना, जो यार लिखा तो वैसे इरशाद कामिल ने था, सिंगर थे नीरज श्रीधर और म्यूजिक था प्रीतम का। और जब भी शाम को थोड़ा ग्रूव चाहिए था ना तो हम ट्विस्ट सुनते थे, क्योंकि यार नीरज श्रीधर की एनर्जेटिक आवाज़ ही ऐसी थी कि यार अगर तुम बस बैठे हो ना तो भी थिरकने लग जाते थे। और प्रीतम का फंकी कंपोजिशन, इन दोनों का बहुत ही परफेक्ट मेल था, और ये जो गाना था हर पार्टी में अपने आप को पोजीशन कर ही लेता था। वैसे मज़े की बात तो ये है कि इस सॉन्ग की कोरियोग्राफी में सैफ अली खान ने अपने नेचुरल डांसिंग स्टाइल को फुल ऑन एक्सप्लोर किया था, जहाँ उन्होंने स्पॉन्टेनियस डांस मूव्स किए थे। मतलब वो ज़्यादा कोरियोग्राफी हुई ही नहीं थी उस मूवी में, जो फिल्म में सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग था। वैसे प्रीतम और इरशाद कामिल का कोलैबोरेशन फुल ऑन फन वाइब, ये गाना एक इंस्टेंट क्राउड पुलर बन ही गया था, और आज भी उतना ही हमें थिरकाता है, उतना ही हमें डांस करने पे मजबूर करता है। तो आप भी बताना कि आपका ट्विस्ट मोमेंट कब था। टेल मी ऑन इंस्टा आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI, और क्या आज भी ये गाना सुन के आप भी अपने आप में डांस करते हो। वैसे इस एल्बम के और भी गाने के बारे में बात होने वाली है, तो कहीं ना जाइए, बने रहिए मेरे साथ राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
1: अब
3: मिर्ची का
4: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि, और बातें हो रही है 2009 के एक ऐसे एल्बम की जिसका यार हर एक गाना सुपर डुपर हिट था। जी हाँ, लव आज का कल का, लव आज कल कंपोज्ड बाय प्रीतम। और उस एल्बम का जो ये गाना है, ये एक ऐसा गाना था जिसने यार ब्रेकअप को भी ना मुस्कुरा कर देखना सिखा दिया था। ऑफकोर्स आपने गेस कर ही लिया होगा, चोर बाजारी। मतलब कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि ज़्यादातर ब्रेकअप सॉन्ग्स रुला देते हैं या फिर फिलोसॉफिकल हो जाते हैं, मतलब अरिजीत सिंह टाइप्स, लेकिन चोर बाजारी ये हार्ट ब्रेक को भी ना थोड़ा शरारती बना देता था। मतलब अगर आज की शाम में ट्रैफिक में फंसे एक्स की याद आ भी जाए तो ये गाना कहता है कि यार थोड़ा हंस लो उस पे, क्योंकि नीरज श्रीधर और सुनिधि चौहान की नोक झोंक भरी वोकल्स बिल्कुल दो एक्स लवर्स की टीजिंग जैसी लगती है। और प्रीतम ने इसमें दर्द को ढोलक और बाउंस के साथ पैकेज किया। मतलब सोचिए क्या कमाल का कॉन्ट्रास्ट है। मज़े की बात तो ये है कि इम्तियाज़ अली ने इस गाने को ना स्पेसिफिकली सैड सेपरेशन जोन में नहीं रखा था, डेलिबरेटली प्लेफुल बनाया था, क्योंकि जय और मीरा का जो रिलेशनशिप है वो ख़त्म होके भी मूवी में ख़त्म नहीं हुआ था, और इसीलिए गाना ब्रेकअप सॉन्ग होकर भी सेलिब्रेशन लगता है। और वो अकॉर्डियन स्ट्रीट बैंड जैसा जो फील है ना, वो यार दिल्ली की गलियों में सीधा लेके जाता है, जहाँ दिल और ईगो दोनों साथ में भाग रहे होते हैं। वैसे आप भी बताना कि हार्ट ब्रेक का कौन सा ऐसा सॉन्ग है जो आपको बहुत पसंद है। क्या वो इसी तरह हल्का वाला गाना है या फिर दिल तोड़ के चीर देने वाला गाना है? टेल मी ऑन इंस्टेड आरजी मिर्ची सिद्धि SIDDHI। फिलहाल करेंगे इसी एल्बम पे थोड़ी और बातें, लेकिन आपके लिए राइट हियर चोर बाजारी ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, इट्स हॉट।

0: अरे भाई क्यों मार रहे हो इसे?
1: अबे भाई मैंने इससे पूछा क्रिकेट का गोल्ड कौन है,
0: इसे ये नहीं पता।
1: कौन है बता?
0: कोहली।
1: अरे तू भी आस। इधर हमारी विमेंस क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को हरा के एशियन गेम्स में गोल्ड जीता है और तुम दोनों को गोल्ड नहीं पता। तुम दोनों गग गोल्ड हो।
2: वो क्या होता है?
1: गैर गुजरे ऑफ ऑल टाइम
2: इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम। कंग्रेचुलेशंस।
3: इट्स हॉट।

लंबी लंबी ट्रिप्स के बाद अगर कोई एक चीज़ की क्रेविंग होती है तो वो क्या है। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि और सबके दिल से एक ही आवाज़ निकली होगी, घर के खाने की। जी हाँ, सफ़र चाहे कितना भी अच्छा हो, बाहर कितना भी खा लिया हो, एक पॉइंट के बाद ना दिल बस कुछ सिंपल, गर्मा गर्म और अपना सा चाहता है। आपने कभी नोटिस किया है, थकान तो आधी तब उतर जाती है जब किचन से हल्की सी तड़के की खुशबू आती है, और फिर याद आता है कि कुछ कंफर्ट फूड ना फैशनेबल नहीं होते, बस फॉरएवर होते हैं। और मेरे लिए उस सुकून का एक ही नाम है, एक गर्मा गर्म बोल ऑफ मूंग दाल की खिचड़ी, हल्की सी घी, साथ में थोड़ा सा अचार, और बस जैसे सफ़र की सारी थकान ही उतर गई हो। बॉडी को ऐसा ईज मिलता है और दिल को भी इतना ज़्यादा सुकून मिलता है विद जस्ट दैट वन बोल ऑफ मूंग दाल की खिचड़ी। इतना सिंपल सा खाना, लेकिन क्या कमाल का कम्फर्ट है, ऑनेस्टली अंडररेटेड। और ऐसे ही घर वाले स्वाद के लिए आज ही ले आइए दीप प्रीमियम इंडियन ओरिजिन मूंग दाल फ्रॉम योर नियरेस्ट इंडियन ग्रोसरी स्टोर। दीप, खाओ तो जानो और मुझे बताओ कि आपका कंफर्ट फूड क्या है। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI, और तब तक के लिए सुनते रहिए मिर्ची इट्स हॉट।

दोस्तों मिडवीक का भी ना एक अजीब ही फेज होता है। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप और मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। और जब मंडे का शौक निकल जाता है ना और फ्राइडे की एक्साइटमेंट आई नहीं होती है, तब ये जो मिडवीक है ना यानी वेंसडे, ये बिल्कुल मूवी का इंटरवल जैसे लगता है। मतलब स्टोरी तो चल रही है पर क्लाइमैक्स अभी दूर है। और इसी वक्त ना इंसान सबसे ज़्यादा चाय पीता है और सबसे ज़्यादा बस वीकेंड आ जाए यही बोलता रहता है। पर इंटरेस्टिंग बात ये है कि यार इसी मिडवीक में ना सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव आइडियाज़ भी आते हैं। तो आप भी बताना दोस्तों कि आपका मिडवीक मोटिवेशन क्या है। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और मिडवीक में आपके मूड को अप करने के लिए ये अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi. Iskabana, puskabana, sakabana. Rabbana. Burga, burga. La firma la burga. Mirchi, burga. Burga.
1: हेलो
2: मिल गया मैडम, आप मयूर विहार में हमारे रक्षा पे बैठ के मयूर विहार फेस वन से फेस टू गई थी, याद है आपका?
1: नहीं, नंबर कहाँ से मिल गया?
2: वही आपको बता रहे हैं, आप जब उतर के गई है ना अपने घर, और घर के जो आपके पड़ोसी हैं, हम उनसे नंबर आपका लिए हैं, मोबाइल नंबर जो आप बोले हैं दाए को मुड़ने के लिए, जब दाए मुड़े हैं ना हम, मैडम आपका रास्ते में फोन भी आया था, जब आपका फुनवा बजा है तो आपकी आवाज सुने हैं हम, बहुत अच्छा लगा है आवाज सुन के। आप जब रिक्शा पे बैठी है ना, मैं हम कसम खा रहे हैं, हम जब से आप बैठे हो सीट को हम किस छूने भी नहीं दिए, हम धोलाए भी नहीं है।
1: क्या तुझे पागल लग
2: नहीं वो मैडम, हम आपसे एक बात कहना चाह रहे थे।
1: क्या कहना है
2: मैडम? आई लव यू। हम आपको देख के इतना
3: मेरी बात है, चारू चारू फोन मत रखना, चारू फोन मत रखना, चारू फोन मत रखना, चारू चारू चलो। हेलो हेलो हेलो हेलो चारू, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मुझे किसी ने तुम्हारा नंबर दिया था, उसने मुझे बताया कि तुमने रिक्शा पे ट्रैवल किया था, रिक्शा पे बैठ के गई थी, मैंने तो मजाक किया, तुम्हारा मुर्गा बना दिया। आई लव यू, बट मैं सभी से मोहब्बत करता हूँ यार, आई लव यू, मैं रिक्शा नहीं चलाता हूँ। चारू प्लीज बुरा मत मान यार, थोड़ा सा नहीं, रिक्शा मैं चलाने को तैयार हूँ यार तुम्हारी वजह से, लेकिन तुम प्लीज जरा थोड़ा सा गुस्सा कम कर दो, मेरे साथ प्यार से हंस के बोल दो।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स

दोस्तों, कितने लोगों के लिए अमेरिकन ड्रीम कोई एलिवेटर नहीं बल्कि एक लैडर होता है। शाम शानदार लाइफ सुन रहे आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और ऐसे लोगों के लिए अमेरिकन ड्रीम एक रात का सपना नहीं होता, वो सुबह सुबह आंख खोल के देखा गया एक लॉन्ग टर्म विजन होता है। हर सपना एक साइलेंट चेकलिस्ट होता है, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी और एक जगह जिसे आप घर कह सको। और जब ये सपना रियल होने लगता है ना, तब पता चलता है कि लक का नहीं, प्लानिंग का गेम है। और इसी प्लानिंग के नेक्स्ट स्टेप के बारे में आज बात करेंगे मेरे दोस्त बीश फ्रॉम लैंड मॉर्गेज। ओवर टू यू बीश।

0: न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट,
0: ओनली ऑन रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: अरे भाई क्यों मार रहे हो इसे?
1: अबे भाई मैंने इससे पूछा क्रिकेट का गोल्ड कौन है,
0: इसे ये नहीं पता।
1: कौन है बता?
0: कोहली।
1: अरे तू भी आस। इधर हमारी विमेन्स क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को हरा के एशियन गेम्स में गोल्ड जीता है और तुम दोनों को गोल्ड नहीं पता। तुम दोनों गग गोल्ड हो।
2: वो क्या होता है?
1: गैर गुजरे ऑफ ऑल टाइम
2: इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम। कंग्रेचुलेशंस।
3: इट्स हॉट।

कभी कभी लगता है न्यूज सिर्फ हेडलाइंस नहीं, हमारी डेली लाइफ का मूड भी डिसाइड कर देती है। शाम शादा लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। और सुबह फोन उठाओ तो कोई ना कोई अपडेट जरूर मिल ही जाता है। मतलब स्टॉक मार्केट ऊपर, डॉलर नीचे, इन्फ्लेशन की बात, इकोनॉमी का डिस्कशन, और हम सब 2 मिनट के लिए फाइनेंशियल एक्सपर्ट बन ही जाते हैं। लेकिन इन सारी हेडलाइंस के बीच ना एक चीज कभी चेंज नहीं होती, घर वालों की एक्सपेक्टेशंस। उन्हें तो सिर्फ इतना पता होता है कि जब ज़रूरत हो तब सपोर्ट वक्त पर मिल जाना चाहिए। और इसीलिए जब बात हो इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल या बांग्लादेश में पैसे भेजने की, तो प्रोसेस भी सिंपल होनी चाहिए। टैप टैप सेंड के साथ भेजिए मनी इंस्टेंटली, ग्रेट एक्सचेंज रेट और जीरो ट्रांसफर फी के साथ। मतलब नो वेट, नो हैसल, बस सपोर्ट जब भी जरूरत हो। तो आज ही डाउनलोड कीजिए टैप टैप सेंड ऐप, सेंड मोर एंड स्पेंड लेस। तो चलिए सुनते एक गाना जो हर डिस्टेंस को थोड़ा छोटा कर ही देता है। राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मटक मटक लौंडो के दिल पटक पटक सांसें जाए अटक अटक आता माझी सटक सटक बम तेरा गुदे खाए कमर पे तेरी बटरफ्लाई बॉडी तेरी मक्खन जैसे खाने में बस तू बटर खाए कम ऑन बेबी किकेट किकेट काटू तेरी टिकेट टिकेट खेलता नहीं क्रिकेट विकेट पर ले लूं तेरी विकेट विकेट
1: बड़ो

बॉलीवुड की एक अच्छी बात यह है कि सिंगर्स का काम ना कभी भी आउट ऑफ फैशन नहीं होता। शाम शानदार लाइक सुन रहे आप दोस्तों, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि, और आज भी एक अच्छी आवाज सीधा दिल तक पहुंच ही जाती है, चाहे रोमांटिक हो, सुकून भरी हो या थोड़ी इंट्रोस्पेक्टिव। आज के गाने लाउड होने से भी ज्यादा लास्टिंग होने पे फोकस कर रहे हैं, और ऑनेस्टली ये फेज काफी रिफ्रेशिंग लगता है। तो आप भी बताना कि आपको बॉलीवुड सॉन्ग में सबसे ज्यादा क्या कनेक्ट करता है, लिरिक्स या वॉइस? टेल मी ऑन इंस्टाग्राम RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और फिलहाल एक बहुत ही खूबसूरत आवाज का ये खूबसूरत सा गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirci. Iskabana, puskabana, sakabana. Rabbana. Burga, burga. La virba la burga. Mirci, burga.
1: हेलो
2: हेलो मुकेश जी.
1: कौन
2: मुकेश जी? मैं ये प्रताप बोल रहा हूँ, राणा मोटर से. आपने जो 1000 दी थी ना, उसका वो जो कार्बोरेटर साफ होना था, वो सर हो नहीं पाया एक्चुअली. थोड़ा
1: नहीं हो पाया भाई.
2: हाँ, वो नहीं हो पाया सर.
1: हाँ जी, नहीं पाया
2: सर, वो थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी. अच्छा सर, आप बता रहे थे ना पीछे बोनेट से आवाज आ रही है आपकी गाड़ी की. सर वो भी हो नहीं पाई है, वो उसमें थोड़ा हो नहीं पाया हमसे अभी.
1: नहीं, क्या नहीं पाया तुम्हारे यार, रोज गए तुम्हें, जब भी गाड़ी तो नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया, क्या मजाक ही क्या है ये?
2: नहीं मुकेश जी, मैं समझ रहा हूँ वो
1: एक का... क्या समझ रहे हो भाई?
2: नहीं नहीं, आप सही कह रहे हैं. अच्छा मुकेश जी, आपने एक बताया था ना ब्रेक ऑयल डलना है, ब्रेक काम नहीं कर रहे. सर वो ऑयल डल नहीं पाया थोड़ा.
1: अरे तो हो क्या पाया है तुमसे
2: सर? वो
1: ये नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया. मुझे फोन करना है, मुझे फोन इसलिए कराया कि ये नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया.
2: नहीं सर,
1: आपको तो फोन इसलिए करना था कि भाई ये जो काम दिया गया आपको वो कर दे.
2: नहीं सर, कुछ हो नहीं पाया.
1: क्यों नहीं हो पाया
2: सर? वो रात गाड़ी चोरी हो गई आपकी.
1: है
2: सर, रात गाड़ी चोरी हो गई आपकी.
1: अरे तेरा दिमाग खराब है क्या?
2: अरे सर मैं वही आपसे कह रहा हूँ, मतलब हम
1: क्या करा दूँ
2: सर? मतलब आप ये आप आके FIR लिखवा देंगे अपनी गाड़ी की?
1: कैसी FIR? दिमाग खराब हो गया तेरा, पागल तो नहीं है तू?
2: अरे सर जितने की गाड़ी थी इतना दे देंगे आप? गुस्सा तो मत करिए कम से कम.
1: गुस्से ना करूं, नई गाड़ी थी हमारी.
2: नहीं सर, आप आपकी नई गाड़ी थी तो सर हमारे भी तो उसमें कुछ गया है. हमने भी तो ग्रीस लगाया.
1: उसमें
2: ग्रीस लगाया, उसमें हमने पेट्रोल डाला.
1: ग्रीस कितने का? 5 रुपए का लगाया. आग लगा दूंगा मैं तुम्हारे शोरूम में, तुम्हारे वर्कशॉप में.
2: अच्छा
1: मुझे चाहिए अपनी वापस.
2: सर आप इतना गुस्सा ना करें,
1: जिम्मेदारी तुम्हारी है FIR वगैरह कराने की.
2: सर बिल्कुल आप गुस्सा ना करें. अच्छा सर, ऐसा चल सकता है जैसे आप गाड़ी ना लेके कॉम्पोजिट कर दें, हम आज शाम आपको मुर्गा खिला दें और मुकेश वो बन भी गया मुर्गा.
3: मुकेश मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, छोटा सा मजाक किया तुम्हारे साथ, मुर्गा बना दिया तुम्हारा.
1: तो जान निकाल दी हमारी.
3: मुकेश आपकी गाड़ी वहीं खड़ी है आपकी वर्कशॉप में, बस उसको धक्का लगाना है और आपको धक्का हम लगा देंगे. मेरे साथ जरा प्यार से कह दीजिए, गुस्सा खत्म करिए.
1: कुकड़ू कू
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

करियर में एक पॉइंट ऐसा आता है जब हार्डवर्क के साथ रीपोजिशनिंग भी ना जरूरी हो जाती है। शाम शाम द लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। एंड व्हेनेवर वी हियर अबाउट लेऑफ्स, एआई, टेक्नोलॉजी चेंजेस एंड इवन यंगर कलीग्स मूविंग फास्ट, कभी कभी ना नेचुरली एक सवाल आ ही जाता है, एम आई स्टिल रेलिवेंट? और अगर ये सवाल आपके भी माइंड में कभी आया है, देन न्यू जर्सी, मार्क दिस डेट, September 27, बिकॉज कमिंग टू शेरेटन एडिसन आर 4-time TEDx स्पीकर्स, best-selling authors and multi-award-winning career coaches Shilpa and Kapil Kulshrestha, bringing in their in-person career growth workshops to New Jersey. They have helped 1,500-plus mid-career professionals accelerate promotion, get double promotion, improve visibility, strengthen leadership presence, attract bigger opportunities, and even achieve 50% to 180% salary raises. This workshop is designed to help you revitalize your career, reposition your value, and move forward with more clarity and confidence. So, aaj hi register kijiye at playitful.com/nj. That's playitful.com/nj. Aur ab next level career energy ke liye, next level gana right here on Mirchi. It's hot.

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और हैरत से नहीं, एनर्जी से भर गया था ये ट्रैक, क्योंकि यार ये गाना फ्रॉम द एल्बम अनजाना, अनजानी सुन के यार मूड ना एकदम ऑटो फ्रेश हो जाता था। लकी अली की वॉइस विशाल शेखर के बीट मैजिक क्रिएट कर देता था। और जी हाँ, हैरत वो गाना था जो रणबीर के जो बाइक राइड या कार राइड के सीन्स थे उन सबको भुलाकर अपने इनर ट्रैवलर को जगाने के लिए बनाया गया था। मतलब अगर वेगस में ड्राइव कर रहे हो तो मन में हैरत गाना तो बचता ही था। तो चलिए आज इस गाने का टेम्पो फील करते हैं। गाड़ी फुल स्पीड में मत चलाना क्योंकि हम अभी भी न्यू जर्सी में हैं, लेकिन गाने का तो फील कर सकते हैं बॉस। तो चलिए सुनते हैं हैरत फ्रॉम द एल्बम अनजाना अनजानी राइट हियर ऑन मिर्ची। वैसे आप भी बता सकते हो विच इज़ योर फेवरेट एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट है। टेल मी Insta at RJ Mirchi Siddhi, SIDDHI, or tab tak ke liye Hairath, right here on Mirchi, it's hot. Radio.

0: इधर।
1: अरे भाई क्यों मार रहे हो इसे?
0: अबे भाई मैंने इससे पूछा क्रिकेट का गोल्ड कौन है,
1: इसे ये नहीं पता।
0: कौन है बता?
1: कोहली।
0: अरे तू भी आस। इधर हमारी विमेंस क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को हरा के एशियन गेम्स में गोल्ड जीता है और तुम दोनों को गोल्ड नहीं पता। तुम दोनों गग गोल्ड हो।
2: वो क्या होता है?
0: गैर गुजरे ऑफ ऑल टाइम
2: इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम। कंग्रेचुलेशंस।
3: इट्स हॉट।

एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धी। और जी हाँ, बातें हो रही है एक ऐसे एल्बम की जिसका हर एक गाना यार हिट पे हिट था। और इस एल्बम का जो टाइटल ट्रैक था उसने यार सिर्फ मूवी में ही नहीं बल्कि पूरे जनरेशन का मूड बना दिया था। जी हाँ, बात हो रही है अनजाना अनजानी की। और अनजाना अनजानी की जो कहानी है, जो विशाल ददलानी और शिल्पा राव के डुएट में गाया गया था, जिसके लिरिक्स में ही ना वो एक वंडरलस्ट फील था कि कौन जाने कौन हूँ मैं, मतलब इंस्टेंट कनेक्ट था। और सबके लाइफ में जो ये अपनी जो भी अपनी राह ढूंढ रहे होते हैं ना, उनके लिए एकदम हिटिंग सॉन्ग था ये। वैसे गाना सुन के तो लगता था जैसे जिंदगी ना एक ट्रिप ही है, मतलब डेस्टिनेशन नहीं। तो अगर आपको भी ऐसा ही गाना जर्नी वाला पसंद है तो मुझे जरूर बताना विच इज योर फेवरेट सॉन्ग फ्रॉम योर फेवरेट एल्बम। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम आरजेमिट्री सिद्धी SIDDHR। और फिलहाल बजाते हैं ये अनजाना अनजानी का सुपर डुपर हिट गाना right here on Mirchi, it's hot.

डिलटीना चिकन चमेली कट कटरीना सच बोला था शाहरुख खिश्क कमीना, तूने यूं तो किया बर्बाद, तू एक नंबर बाकी तेरे बाद है। टीचर के लेक्चर याद होना हो तुझे बादशाह के गाने सारे याद है।

0: की गल करनी है?
1: तेरे मेरे बारे
0: की?
1: यार बचपन तो लेके आज तक तू ही है।
0: बचपन दी बात होर सी।
1: यार 10 साल हो गए।
0: अच्छा मैं लेट हो रही हूँ, फोन ते गल करती हूँ।
1: अच्छा चल फिर फोन नंबर दे दे।

0: का
1: शाम शानदार, लेट्स डू नॉटंकी हैव अ फंकी टाइम।
0: एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शानदार लाइव सुन रहे आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धी। और जी हां, 2010 में आई थी ये एल्बम अनजाना अनजानी, कंपोज्ड बाय विशाल शेखर। और इसका एक ऐसा गाना आया था जिसमें यार मतलब दिल तोड़ दिया या फिर यादें छोड़ गई हो ना, बस वो गाना सुन लो हर फीलिंग डबल हो जाती थी। मोहित चौहान की आवाज़ में और शेखर रवजियानी ने भी जो इमोशन दिया था इस ट्रैक में, ओहो, किसी थेरेपी से ना कम नहीं था। क्योंकि इस गाने में सूफी टच भी था, मॉडर्न मेलेडी भी थी, जैसे कि दर्द और सुकून बिल्कुल एक साथ मिल गए हो। तो दोस्तों, इतना प्यारा गाना इस एल्बम का। वैसे तो यार इस एल्बम के हर एक गाने अमेजिंग थे, तो आपको कौन सा गाना इस एल्बम का सबसे ज़्यादा पसंद है, टेल मी ऑन इंस्टा आरजे मिर्ची सिद्धी SIDDHI। और फिलहाल ये जो ब्रेकअप रिकवरी वाला गाना है ना, सुन लेते हैं यार विशाल शेखर की कंपोजिशन राइट हियर ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Milci. Iskabana, uskabana, sakabana. Rambala. Burga, burga. Na vidva la burga.
1: Milci, burga.
2: हेलो,
3: दिमाग खराब कर रखा है। रॉयल स्टूडियो से बोल रहे हैं भाई?
2: हाँ जी।
3: यार कमाल कर दिया आपने, जो फोटो खींचा थे मेरे बेटे की शादी के, सारी एल्बम आ गई है। क्या फोटो खींचे यार, दिमाग खराब कर दिया।
2: क्यों सर जी, क्या हो गया फोटो में?
3: अरे फोटो आके देख यार, यहाँ पे क्या एल्बम बना रखी है, सबके फोटो अजीब से आए यार, सारे फोटो यार बकवास कर दिया आपने, मेरा दिमाग खराब।
2: फोटो बहुत अच्छा है। क्या
3: फोटो? बहुत अच्छा है, सतीश चंद का एक बटन उसकी शादी के फोटो बका दिया यार, सारे दिमाग।
2: सतीश जी बहुत अच्छे फोटो, बहुत।
3: अरे मैं झूठ बोल रहा हूँ, मतलब मैं पागल हूँ? आपने एल्बम देखी है? एल्बम देखी है?
2: मैंने देखी खुद अपने हाथ से। सर जी हमने फिश लाइन लगाया उसके ऊपर, बेहतरीन। आप देखिए एक से बेहतरीन क्लोजअप है उसके अंदर।
3: अरे क्लोजअप को मारा गोली यार, क्लोजअप तो देखे में शर्म आ रही है हमें।
2: अरे शर्म की क्या बात है सर,
3: जितने

0: नहीं नहीं मैं कल को अरे लेंस ऐसे पूरे कपड़े कौन से, मैंने शेरवानी पहना की थी, शेरवानी गायब है अंदर से सब दिख रहा है यार, शेरवानी तुमने गायब करी है यार मेरी,
1: अरे
0: मैं केस कर सकता हूँ वहाँ पे,
1: नहीं साहब देखिए केस वेस की बात मत कीजिए, इसने हमारा नाम है इलाके में,
0: अरे हमारा हमारा भी कुछ था, अब कुछ नहीं बचा जब से फोटो देखे
1: हैं, सर क्या बात, चुन के बनाया है,
0: कोई फोटो चुन के नहीं बनाया, मेरा बेटा खड़ा है, कपड़े नहीं है बहू, उसका चलो छोड़ो मैंने देखा भी नहीं है, वो खड़ा है, जितने बराती आया सबके कपड़े गायब है, ऐसा लग रहा है यार पता नहीं अफ्रीका में शादी हो रही है यार,
1: अरे नहीं सर कहीं गड़बड़ लग रही है मुझे,
0: गड़बड़
1: देखना चाहूंगा एक बार फिर आपकी आलो में, ऐसी कोई बात नहीं
0: यार, इतना बुरा लग रहा है, हर आदमी के प्लेट में, हर आदमी के हाथ में प्लेट है, कपड़े है भी
1: दिखाइए
0: आपका कपड़े कैसे, आप उसको सही करिए यार,
1: कोई सिस्टम ही नहीं है कपड़े गायब हो जाए,
0: ऐसा सिस्टम है एक जगह होता है,
1: कहाँ होता है बताइए,
2: रेडियो मिर्ची 98.3 एफएम पर आप मुर्गा बन रहे हैं रेडियो मिर्ची,
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची।

सॉन्ग तुमसे ही तुमसे। और ये जो रिक्वेस्ट आई है दैट इज़ फ्रॉम रिया, और जो कि रहती है एडिसन में। और रिया जी कहती है कि यार ये गाना जो तुमसे ही तुमसे गाना है प्लीज़ सिद्धि जी बजा देना, क्योंकि ये मूड रोमांटिक है और वेदर भी रोमांटिक है, तो ऐसे माहौल में ये गाना तो बजना चाहिए। तो जी हाँ रिया जी, एब्सोल्युटली करेक्ट। दोस्तों वैसे क्या आपको 2010 का वक्त याद है जब अनजाना अनजानी एल्बम ने सबको होपलेस रोमांटिक ही बना दिया था? मतलब विशाल शेखर का मैजिक चला था और इतनी खूबसूरत सी आवाज़ है हर गाने में, विशाल की कहिए, शिल्पा राव की कहिए, रणबीर प्रियंका की केमिस्ट्री, ओ हो, मतलब तुमसे ही तुमसे एक बहुत ही सुंदर सा गाना है जहाँ हर नोट लगता है जैसे दिल से निकला हो। जैसे लॉन्ग ड्राइव पे सनसेट के टाइम ये गाना बज जाए ना तो बस दुनिया रुक जाए। और मुझे तो लगता है कि हर किसी के लाइफ में एक तुमसे ही तुमसे मोमेंट ज़रूर होता है जहाँ सब कुछ एकदम ब्लर सा हो जाता है और बस वो एक इंसान दिखता है जो दिल में है। तो बताइए आपका तुमसे ही तुमसे मोमेंट कब आया था? टेल मी ऑन इंस्टा RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI, या फिर इसी एल्बम का आपका फेवरेट गाना भी आप बता सकते हो। फिलहाल हम बजा रहे हैं तुमसे ही तुमसे, रिया जी के रिक्वेस्ट पर, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम चांदा लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। और आज एक ऐसे एल्बम के बारे में बात हो रही है जिसका यार हर एक गाना सुपर डुपर हिट है। जी हाँ, अनजाना अनजानी 2010 में रिलीज हुआ वो एल्बम। और आज की जो रिक्वेस्ट आई, सॉन्ग रिक्वेस्ट, दैट इज फॉर

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, इट्स हॉट।
1: शाम शानदार, लेट्स डू नॉटंकी, हैव अ फंकी टाइम।
2: एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। चम चंदा लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धी और बात हो रही है 2010 के एल्बम की, अनजाना अनजानी के एल्बम की, जिसको कंपोज किया है विशाल और शेखर ने। और फिलहाल जो रिक्वेस्ट आई है दैट इज फ्रॉम राज, जो कि रहते हैं पिस्कैटवे में। और यार वो कहते हैं कि यार माहौल इतना अमेजिंग सा है, मौसम खूबसूरत सा है, तो थोड़ा अपबीट गाना चाहिए। जी हाँ, तो इसी के लिए आई फील गुड जरूर बजाइए। तो बस नाम ही काफ़ी है यार, मतलब आई फील गुड एक ऐसा गाना जो बजते ही लगता है कि दुनिया में ना स्ट्रेस नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। और रणबीर और प्रियंका की केयर फ्री केमिस्ट्री इन दिस मूवी अनजाना अनजानी, न्यूयॉर्क इन नियॉन लाइट और विशाल ददलानी की वो रॉक स्टार एनर्जी, इस सॉन्ग को हर बीट में ऐसा लगता है कि बस लाइफ के सारे प्रॉब्लम्स को भूल जाओ और चिल कर लो यार। तो चलिए आज बजाते हैं आई फील गुड फ्रॉम द वंडरफुल एल्बम ऑफ अनजाना अनजानी, जिसका हर एक गाना ज़बरदस्त है। वैसे आप भी मुझे बता सकते हो वो ऐसा कौन सा एल्बम है जिसका यार हर एक गाना सुपर डुपर हिट है। टेल मी ऑन इंस्टा एट RJ मिर्ची सिद्धी SIDDHI। और तब तक के लिए राज के रिक्वेस्ट पर बजाते हैं आई फील गुड राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

Yeah, भाई तेरा बस लगता गाने, हर दुनिया देती ताने, बस इन्हें दिक्कत पर जब गाना बजे लगे सब सर हिलाने, शौकीन चाहिए टिकटे, चाहे होने देना शौक को, ऐसे मुझे गाली बकते पर इंस्टा पे मेरे साथ चाहिए फोटो, घड़ी धीरे चलती हम तेज चलते, भर डाला ओटू इनके फेस बनते, इनके करियर से लंबे हम पे केस चलते, ऐ

0: अरे भाई क्यों मार रहे हो इसे?
1: अबे भाई मैंने इससे पूछा क्रिकेट का गोल्ड कौन है,
0: इसे ये नहीं पता।
1: कौन है बता?
0: कोहली।
1: तू भी
2: आस। इधर
1: हमारी विमेन्स क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को हरा के एशियन गेम्स में गोल्ड जीता है और तुम दोनों को गोल्ड नहीं पता। तुम दोनों गग गोल्ड हो।
3: वो क्या होता है?
1: गैर गुजरे ऑफ ऑल टाइम
2: इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम। कंग्रेचुलेशंस।
4: इट्स हॉट।

शमशान लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धी और इसी प्यारी सी एनर्जी के साथ आई एम साइनिंग ऑफ फॉर टुनाइट। और वैसे तो हमने आज थोड़ी लोकल, थोड़ी फिल्मी, थोड़ी ओटीटी और बहुत सारी नॉस्टैल्जिया शेयर की है और होप आज की जो आपकी शाम है थोड़ी सी लाइटर और ज़्यादा फिल्मी बन गई हो। और इसी के साथ कल मिलते हैं फिर एक बार विद नई गपशप और नए सॉन्ग रिक्वेस्ट। तो अपनी सॉन्ग रिक्वेस्ट की लिस्ट रेडी रखना, सेंड मी ऑन इंस्टा @RJMirchiSiddhi और आप कहीं ना जाइए क्योंकि मिर्ची रोशी आने वाली है लव के नए फंडे लेकर। तो तब तक के लिए सुनते रहिए मिर्ची, इट्स हॉट।